मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के

ज्येष्ठ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026, प्रातः के 5:57 होने को है, आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी

0: जारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और DRM 1233 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए मिट्टी की जांच का महत्व विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
4: किसान भाइयों, मिट्टी में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हों तभी हमारी फसल बिल्कुल स्वस्थ एवं अधिक उपज देने वाली हो सकती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और वह बीमार ना होने पाए, इसीलिए हम मिट्टी की जांच करवाते हैं ताकि यह निश्चित हो जाए कि जमीन में किस तरह की कमी है।

मिट्टी में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हों, तभी हमारी फसल बिल्कुल स्वस्थ एवं अधिक उपज देने वाली हो सकती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और वह बीमार ना होने पाए, इसीलिए हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, ताकि यह निश्चित हो जाए कि ज़मीन में किस तरह की कमी है। मिट्टी की जांच के लिए सबसे पहले जिस खेत की मिट्टी की जांच करवानी हो उससे नमूना लेते हैं और फिर इस सैंपल को जांच के लिए भेजा जाता है। मिट्टी की जांच का सबसे उपयुक्त समय क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच कराने का सबसे अच्छा समय फसल काटने के बाद या बुआई से पहले है, लेकिन यदि परती या ऊसर ज़मीन है तो मिट्टी का नमूना किसी भी समय ले सकते हैं। वैसे इसके लिए मार्च से लेकर के जून तक का समय उपयुक्त रहता है। अगर खेत में फसलें खड़ी हैं तो फसल की दो लाइनों के बीच से भी नमूना ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि बुआई के कम 30 दिन पहले आप नमूना जांच के लिए अवश्य भेज दें, ताकि समय से रिपोर्ट प्राप्त हो जाए और उस अनुसार आप उर्वरकों का प्रयोग करें। ये तो कुछ बातें हुई कि कब मिट्टी का नमूना भेजना है, और अब कुछ मुख्य बातें नमूना लिया कैसे जाए। चूंकि मिट्टी के परीक्षण की सफलता मिट्टी के नमूना की प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः यह आवश्यक है कि जिस खेत की मिट्टी का परीक्षण करना है उसका ऐसा नमूना एकत्र किया जाए जिसमें उस पूरे खेत की प्रमुख किस्म की मिट्टी का अंश आ जाए। अब बात यह आती है कि किसी खेत से कितने नमूने लिए जाएं। यद्यपि नमूनों की संख्या किसानों की जोतों के आकार, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता तथा विशेष प्रकार की मिट्टी की समस्याओं पर निर्भर करती है, फिर भी मोटे तौर पर 5 एकड़ तक के खेत से हमें एक सैंपल ही लेना चाहिए। फसलों की जड़ें प्रायः मिट्टी में 6 इंच की गहराई में ही होती हैं, अतः ज़्यादातर नमूने इसी 6 इंच की गहराई में ही लिए जाते हैं। हाँ, यदि गन्ने का खेत है या ऊसर जमीन है तो 9 इंच की गहराई तक तथा वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता अनुसार 1 मीटर की विभिन्न गहराई तक, जैसे 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर की गहराई तक भी नमूना ले सकते हैं। पहले जिस खेत का नमूना लेना हो उसे ढाल, संरचना, रंग को ध्यान में रखकर अलग अलग खंडों में बांट लेते हैं तथा वहाँ प्रत्येक खंड से अलग अलग मिट्टी लेना चाहिए। जहाँ की मिट्टी लेना हो वहाँ की घास फूस साफ करके 6 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा एवं 6 इंच गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और उसकी मिट्टी अलग कर देनी चाहिए। फिर इस गड्ढे की लंबवत दीवारों से 1 इंच मोटी परत खुरपी से काट लेते हैं और इस प्रकार इस मिट्टी को ले लेते हैं। इसी प्रकार 8-10 स्थानों की मिट्टी पॉलीथीन पर रखकर मिला लेते हैं और फिर इसे गोलाई में फैलाकर 4 हिस्सों में बांटकर आमने सामने के 2 हिस्सों को लेकर बाकी मिट्टी को फेंक देते हैं। अब इस मिट्टी को फिर गोलाई में फैलाकर 4 हिस्से में बांटकर आमने सामने की आधी मिट्टी ले लेते हैं। ये क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि मिट्टी 500 ग्राम तक नहीं रह जाती। अब यही 500 ग्राम मिट्टी ही नमूना है। इसे पॉलीथीन की थैली में भरकर कपड़े की थैली में बंद कर देते हैं। फिर पहचान के लिए थैली के अंदर एवं थैली के ऊपर अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, विकासखंड, जनपद, खेत का नंबर तथा बोई जाने वाली फसल का नाम लिखना चाहिए और जांच हेतु जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। नमूना लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खेत की मिट्टी गीली ना हो। नमूना लेने की जगह कंपोस्ट या खाद के ढेर नहीं होने चाहिए तथा मेड़ के पास से भी मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। सड़क, नाली तथा पेड़ के पास से भी नमूना नहीं लेना चाहिए। मिट्टी की जांच के बाद उसकी संस्तुतियों के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ती है तथा फालतू उर्वरक देने से बचा जा सकता है। संतुलित उर्वरक देने से पौधों की बढ़वार सुचारू रूप से होती है, उसमें किसी प्रकार की

0: हमारी याद नहीं होती तथा फसलों से अच्छी पैदावार मिलती है।
1: मिट्टी की जांच का महत्व, अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। सभी विघ्नों को हरने वाले, वरदान देने वाले, देवताओं के प्रिय और संसार का कल्याण करने वाले भगवान गणेश को हमारा बारंबार नमन।

सभी प्रकार के मंगलों की मंगल करने वाली कल्याणमयी, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, हे नारायणी, आपको हमारा नमस्कार।

हे वासुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण, हे हरि, हे परमात्मा, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप शरणागत के सभी दुखों और क्लेशों का नाश करने वाले गोविंद हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है।

इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है। आज के गायक कलाकार थे उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, महेंद्र कपूर और चंद्रू आत्मा। हम आकाशवाणी के वारण

0: से केंद्र से बोल रही हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज का विषय है पति प्रेम। वाचन स्वर पुष्पा मिश्रा का है।
1: सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों की पत्नियां यह चाहती हैं कि उनका पतियों के प्रेम पर एकाधिकार हो और वह सदा उसकी अनुगामी बनी रहें। इसलिए कई औरतें तरह तरह के मंत्र, तंत्र, टोने टोटके और जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाती। यह मानवीय दुर्बलता स्त्रियों में हजारों साल से रही होगी, क्योंकि महाभारत के आरण्य पर्व के 224वें अध्याय में इसी समस्या पर विचार किया गया है। इस समस्या को महाभारत में सत्यभामा और द्रौपदी के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सत्यभामा श्री कृष्ण की छोटी पत्नी थी। निश्चय ही कृष्ण का उस पर प्रेम था, किंतु कृष्ण की और भी बहुत सी पत्नियां, उपपत्नियां और प्रेमिकाएं थीं। इसलिए सत्यभामा इस बात के लिए बहुत उत्सुक थी कि ऐसा कोई उपाय मालूम हो जाए जिससे कृष्ण के संपूर्ण प्रेम पर उसका एकाधिकार हो जाए। ऐसी उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने जिस अन्य स्त्री का चुनाव किया वह थी द्रौपदी, जिसके 5 पति थे और वे 5ों का मन जीते हुए थी। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि 5ों पति न सिर्फ उससे प्रेम करते थे बल्कि आपस में स्नेह और विश्वास भी बनाए हुए थे। सत्यभामा के विचार से पति विजय की कला में द्रौपदी से अच्छे गुरु की कल्पना नहीं की जा सकती थी। वन में निवास करती हुई द्रौपदी के पास बैठकर एकांत पाकर सत्यभामा ने अत्यंत आत्मीयता से पूछा, हे याज्ञसेनी, लोकपालों के समान तेजस्वी इन 5 पतियों को तुमने जिस उपाय से वश में कर रखा है वह रहस्य कृपा करके मुझे भी बताओ। क्या कोई कठोर व्रत है, तपस्या है, या तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी के प्रभाव से 5ों पति तुम्हारे वश में रहते हैं? द्रौपदी ने उत्तर दिया, सत्यभामा, यह प्रश्न और इस प्रश्न के पीछे जो ओछा विचार है वह तुम जैसी रूपवती, गुणवती, पतिपरायण स्त्री के योग्य नहीं है। हे शुभे, मैं तुमसे कुछ भी न छिपाऊंगी, किंतु यह निश्चय जानो कि यदि पुरुष को यह आशंका भी हो जाए कि उसकी स्त्री उसे मंत्र, तंत्र या औषधि के प्रयोग से वश में करना चाहती है तो वह अपनी जीवन संगनी से भी इस प्रकार सशंकित और डरा डरा रहने लगेगा जैसे घर के किसी क्षेत्र में सांप की जानकारी हो जाने पर कोई परिवार डरा हुआ रहने लगता है। हे सुलक्षणी, तंत्र मंत्र या जड़ी बूटी से कभी कोई पुरुष किसी स्त्री के वश में तो नहीं हुआ, किंतु इस प्रयास में कई बार कुलच्छनी स्त्रियों ने अपने पतियों को अनेक रोग और मानसिक संताप ही दिए हैं। हे यदुकुल प्रिय, अब मैं अपनी वृत्ति बताती हूँ जिससे मैं महात्मा पांडवों से व्यवहार करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने अभिमान और क्रोध को दूर किया, फिर मैंने चित्त की चंचलता का त्याग किया। मैं नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए मधुर भाषण और सेवा शुश्रूषा से पतियों का आदर और स्नेह अर्जित करती हूँ। अपनी संभाषण में तिरस्कार के शब्द नहीं आने देती, अतिहास और कटु वचन से बचती हूँ, दुष्टा स्त्रियों से घनिष्ठता स्थापित नहीं करती, आलस्य त्याग कर गृह कार्य दक्षता पूर्वक करती हूँ, सत्यवादिनी माता कुंती की परिचर्या स्वयं करती हूँ और मेरी सास ने जो कुछ भी कुल धर्म सिखाया है उसी के अनुसार आचरण करती हूँ। राजभवन हो या वन की कुटिया, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर व्यय का संचालन करती हूँ। यही मेरा व्रत है और यही मेरा उपाय है। द्रौपदी का उत्तर सुनकर भामा लज्जित हुई, किंतु फिर संभल कर बोली, तुम्हारी गरिमा क्या मैं जानती नहीं, किंतु अंतरंग सहेलियों में परिहास की अनुमति तो होती ही है।
0: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज का विषय था पति प्रेम और वाचिका थी पुष्पा मिश्रा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा

0: चर्चा। इस कार्यक्रम में विषय है उचित पोषण अच्छा स्वास्थ्य। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आंचल सिंह।
1: नमस्कार। पोषण कंट्रोल में सिर्फ कंट्रोल करना नहीं आता है, सही प्रपोर्शन भी आता है कि आपको अपनी थाली को किस तरीके से डिजाइन करना है। उसी तरीके से जो मैंने आपको मोटा अनाज एक बताया, मोटा अनाज जनरली लोग वेट लॉस के लिए फॉलो लेके तो चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाउल से रिलेटेड मतलब पेट से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम से हम लोग गेहूं और चावल के आदि हो चुके हैं। हमारी बॉडी आदि हो चुकी है गेहूं और चावल की, और हम सडनली उसको मोटा अनाज दे रहे हैं, उनका बाउल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है और फिर वो कुछ भी खाने के लिए उनका पेट नहीं बच पा रहा है। हमें एक अच्छी आदत को लेकर के आना है, न कि उस आदत को थोपना है। और उस अच्छी आदत को लाने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है दिन की शुरुआत से। दिन की शुरुआत में हमें क्या होता है कि हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं, उन 5 फूड ग्रुप्स को अगर हम अपने दिन की शुरुआत में ऐड करते हैं, चाहे वो जिस भी फॉर्म में, गेहूं बहुत बुरी भी चीज नहीं है। गेहूं तब बुरा बना जब हमने उसको चाल करके उसकी मैदा के फॉर्म में उसकी रोटी खाना शुरू। बस हमें रिफाइंड फॉर्म की चीजों को अपनी डाइट से हटाना है। अगर हम इस तरीके से लेकर के चलते हैं इन चीजों को, तो भी हम बहुत हद तक अपने एक अच्छी हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। तो टेस्ट को अगर हम थोड़ा सा साइड में रखें और टेस्ट डेवलप करें, जैसे मैंने बताया कि हैबिट डेवलप करना है, तो बहुत ही आसान है। कुछ भी नहीं करना है, भाग दौड़ की लाइफ है, सुबह में आपके पास नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है, रात में ही आपने थोड़ा सा चना, थोड़ा सा किशमिश, बादाम, ये सारी चीजें भिगा करके रख दी। ओट्स आपको पसंद है तो आप ओट्स को भी रख सकते हैं, चिया शीट्स वगैरह है। कुछ लोग बहुत फैंसी में जाना चाहते हैं तो वो चिया शीट वगैरह भी रख सकते हैं, और चिया शीट बहुत अच्छी चीज भी है, रखना चाहिए। इन सारी चीजों को आपने रात में ही पानी में भिगो करके रख दिया। सुबह में अब आपको क्या करना है, इसको चर्न कर लेना है किसी फ्रूट्स के साथ, कोई मिल्क नहीं ऐड करना है, बिकॉज एक कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। फ्रूट्स क्या है, इजी टू डाइजेस्ट है, एंड मिल्क को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अगर हम इन दोनों को साथ में कर देंगे तो क्या होता है कि आपको गट प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको फ्रूट्स का ऐड करना है तो आप मिल्क को बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, आपने कुछ फ्रूट्स रखा है एंड सारी चीजों को एक साथ चर्न करके एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है। और लगा कुछ नहीं, रात में आपने भिगो करके सारी चीजों को छोड़ दी, सुबह बस फ्रूट्स को ऐड करके चर्न कर दिया और आपने पी लिया, और बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे सारे आ जाते हैं सिवाय मिल्क के, आपने घर से निकले या बाहर से ही आपने परचेस कर लिया, आपने पी लिया, ये भी आसानी से हो गया। लंच आप घर से लेके गए हैं तो ठीक, नहीं लेके गए हैं तो हेल्दी ऑप्शंस बाहर भी हमारे लिए अवेलेबल हैं, लाइक दाल रोटी सैलेड, ग्रीन वेजीज, या इडली। इडली आपका सबसे हेल्दी ऑप्शन है। बाहर से आपने टिफिन वगैरह पैक कराया है तो उनको भी इसी तरीके इंस्ट्रक्शंस आप दे दीजिए कि मुझे 2 रोटी चाहिए, हरी सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, थोड़ा सलाद चाहिए, तो वो पूरे आपके फूड ग्रुप्स वहां पे आ गए। तो इस तरीके से हमने लंच को भी बैलेंस कर लिया। फिर आती है इवनिंग स्नैक्स की बारी। इवनिंग स्नैक्स में कुछ भी नहीं करना है, लाइक अगर आपके पास समय है तो आपने सूप बना के पी लिया, आपके पास समय नहीं है तो लाइक आपने कुछ फ्रूट्स को कट करके खा लिया। फ्रूट्स कट करके खाने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं जाता है, बस आपको याद होना चाहिए कि आपको इस टाइम पे कुछ ना कुछ लेना है। कोई भी चीज नहीं है, मिक्स सीड्स सबसे सेफर ऑप्शन है। आपने मिक्स सीड्स बैग में कैरी किया हुआ है, चलते फिरते मान लीजिए आप ट्रेवल ही कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी बनाने का ऑप्शन ही नहीं, खरीदने का ऑप्शन है, मिक्स सीड्स आपके बैग में पड़े हुए हैं, आपने एक चम्मच निकाला, मुंह में डाला, अच्छे से धीरे धीरे च्यू करके खा लिया, या रोस्टेड मखाना वगैरह है, कुछ नट सीड्स रखे हुए हैं उनको खा लिया। एंड जब आप घर पहुंचे, घर पहुंच के सिंपल एक सादी खिचड़ी बनाइए, क्योंकि हमारा रात का जो खाना है वो जितना हम लाइट और जितना हेल्दी ले सकते हैं वो होना चाहिए, और खिचड़ी से सब बेटर हेल्दी ऑप्शन आज की डेट में कोई भी नहीं है। आजकल बहुत सारी चीजें चेंज भी हो रही हैं, तो जो भी शादी पार्टीज हैं आजकल हर कोई दाल रोटी, तवा रोटी रख रहा है और दाल भी रख रहा है। फैंसी आइटम भी रखे जा रहे हैं लेकिन सिंपल आइटम भी रखे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की चॉइस ही यही हो गई। आप पहुंचे, आपने फ्रूट चाट खाया, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको भूख है, तो आपने दाल रोटी सिंपल खा लिया। मान लीजिए आपका रोटी का भी मन नहीं है, रोटी नहीं है, मैदे की रोटी है, आप सिंपल दाल चावल भी खा सकते हैं। बस हमें करना क्या है, जैसे एक छोटी कटोरी अगर हम चावल ले रहे हैं तो उसका जस्ट हम डबल दाल को रखेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम 2 कटोरी चावल को ले रहे हैं और 1 कटोरी दाल को ले रहे हैं। अगर हम 1 कटोरी चावल और 2 कटोरी दाल को रख रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो हेल्दी ऑप्शन, और इसके थ्रू हम एक अच्छी हेल्थ को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि दाल चावल आपका एक कंप्लीट प्रोटीन रिच डाइट है, और सबसे आपका यहाँ पे कुछ भी ऑयल कंटेंट भी नहीं गया, स्पाइसेस वगैरह भी कुछ ऐसे नहीं गए जो आपके गट को, आपकी हेल्थ को हार्म करेंगे, और एक अच्छा प्रोटीन कंटेंट, अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में गया जो आसानी से पचेगा। बस इतना भी ध्यान लेकिन रखना है कि आप वॉक जरूर करें आधे घंटे की, एटलीस्ट हमारे पास टाइम नहीं भी है तो 10 मिनट का वॉक जरूर से रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।

उचित पोषण अच्छा स्वास्थ्य, अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी। विशेषज्ञ थीं डॉक्टर आंचल सिंह। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुषभंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे प्रातः 7:31 पर, दिन 12:30 पर और रात्रि 10:30 पर वायलिन वादन। कलाकार होंगे पंडित वीजी जोग। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 आप सुनेंगे रेवती साकलकर की गायी कुछ गजलें और दिन 12:30 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगे धनंजय कुशवाहा। लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और दिन 1:45 पर कलाकार होंगी मंगला विश्वकर्मा। इन्हीं का गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में ही किसान भाई सुनेंगे औद्यानिक फसलों का जैविक नियंत्रण। इस विषय पर डॉक्टर सुहाना पुरी गोस्वामी और सतीश कुमार यादव की बातचीत। शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात के अलावा मार्गदर्शन में टीवी के लिए न्यूज राइटिंग और रिपोर्टिंग की कला विषय पर जानकारी। ये जानकारी देंगे शैलेश चौरसिया। और साथ ही साथ युवा साथी सुनेंगे यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और आनंद लेंगे गीत संगीत का। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 आप आनंद लेंगे गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का और 8:45 पर मधुरिमा और 10 झंकार। दिन 11 आप सुन सकेंगे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो कि आपके भेजे हुए व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा। दिन 1:15 पर गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी चर्चा के अलावा वार्ता जिसका विषय होगा राष्ट्रीय एकता में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार होंगी शिखा बर्मन। साथ ही साथ बहनें आनंद लेंगी जायका और गीत संगीत का। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिक

हर हाल में हमदर्द हो, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरफ। हाफिज जौनपुरी के इस शेर के साथ नमस्कार बनारस, आदाब बनारस, कैसे हैं आप? आई होप मस्त और आबाद होंगे। और आप ट्यून कर चुके हैं आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र, और सुबह की सुनहरी किरणों के साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त प्रियदर्शी, और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, जहां हर सुबह होती है थोड़ी सुरीली, थोड़ी दिलचस्प और ढेर सारी जानकारी से भरपूर। तो चाय के प्याले उठाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आज का शो है बेहद खास। आज हम बात करेंगे तीन अनोखे और दिलचस्प अवसरों की, नेशनल ग्रेप पॉलिस्कल डे, नेशनल ऑटर डे और बकरीद। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 18 मिनट तक हम आपकी सुबह बनाने वाले हैं यादगार। श्रोताओं, नेशनल ग्रेप पॉप्सिकल डे, गर्मियों का मौसम हो और कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है, और आज का दिन उसी खुशी को समर्पित है, नेशनल ग्रेप पॉप्सिकल डे। अब सोचिए, बचपन की वो दो

पहरे जब 5 या 10 रुपए की रंग बिरंगी आइस कैंडी लेकर हम दुनिया जीत लेने जैसा महसूस करते थे। पॉप्सिकल यानी फ्रोजन फ्लेवर्ड आइस ट्रीट और ग्रेप फ्लेवर दुनिया के सबसे पुराने और पसंदीदा फ्लेवर में से एक माना जाता है। श्रोताओं, कहा जाता है कि पॉप्सिकल का इन्वेंशन गलती से हुआ था। 1905 में एक छोटे बच्चे फ्रैंक एपर्शन ने सोडा पावर

एपर्शन ने सोडा पाउडर और पानी को स्टिक के साथ बाहर छोड़ दिया। सुबह देखा तो वो जम चुका था और बस वहीं से जन्म हुआ पॉप्सिकल का। वैसे बनारस की गलियों में भी गर्मियों में मिलने वाली बर्फ की चुस्की किसी पॉप्सिकल से कम नहीं है दोस्तों। काला, खट्टा, ऑरेंज, रोज और ग्रेप फ्लेवर। दोस्तों अब चलते हैं प्रकृति की दुनिया में, क्योंकि आज है नेशनल ऑटर डे। ऑटर यानी उदबिलाव, पानी में रहने वाला बेहद प्यारा, प्लेफुल और इंटेलिजेंट जीव। अगर आपने कभी ऑटर की वीडियो देखी हो तो पता होगा कि वो पानी में तैरते हुए हाथ पकड़कर सोते हैं ताकि बह ना जाए। कितना प्यारा है ना दोस्तों। ऑटर सिर्फ क्यूट नहीं बल्कि एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी भी होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पॉपुलेशन पॉल्यूशन और हैबिटेट लॉस की वजह से कई जगह पर ऑटर की संख्या कम हो रही है। श्रोताओं, तो नेशनल ऑटर डे हमें याद दिलाता है कि हमें वाइल्ड लाइफ और रिवर्स दोनों को बचाने की आवश्यकता है। और जब बात नदियों की हो तो बनारस और गंगा जी का नाम कैसे ना आए। गंगा सिर्फ नदी नहीं है, हमारी संस्कृति और जीवन का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं श्रोताओं, ऑटर स्टोन का इस्तेमाल टूल्स की तरह करते हैं शेल्स तोड़ने के लिए, यानी इंसानों की तरह वो भी स्मार्ट वर्कर्स हैं। दोस्तों कभी कभी जिंदगी भी ऑटर जैसी होनी चाहिए, थोड़ी प्लेफुल, थोड़ी पीसफुल और अपनों का हाथ थामे हुए। और अब बात करते हैं एक ऐसे त्योहार की जो हमें त्याग, विश्वास और इंसानियत का संदेश देता है, बकरीद। दोस्तों इस्लाम धर्म का एक बेहद पवित्र त्योहार। यह हमें हजरत इब्राहिम की उस कुर्बानी की याद दिलाता है जहां उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और समर्पण दिखाया था। इस दिन लोग नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। श्रोताओं यही इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात है, शेयरिंग, केयरिंग और ह्यूमैनिटी। और बनारस की खूबसूरती भी यही है, यहाँ हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है, चाहे देव दीपावली हो, ईद हो या फिर होली। यह शहर मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है दोस्तों। श्रोताओं त्योहार सिर्फ रस्में नहीं होते, ये दिलों को जोड़ने का जरिया भी होते हैं। तो हमारी तरफ से आप सभी को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन में खुशियां, अमन और बरकत बनी रहे। तो दोस्तों आज के गुड मॉर्निंग बनारस में हमने जाना पॉप्सिकल की कूल दुनिया, ऑटर की एडोरेबल लाइफ, बकरीद का खूबसूरत संदेश। उम्मीद है आपकी सुबह थोड़ी और खुशनुमा हो गई होगी। याद रखिए, जिंदगी भी एक रेडियो शो की तरह है, हर दिन नया सेगमेंट, नई कहानी, नया संगीत लेकर आता है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट। और अब जानते हैं क्या है आज के इतिहास में खास, लेकिन इस गीत के बाद कहीं जाइएगा नहीं।

वेलकम बैक श्रोताओं, अब जानते हैं क्या है आज के इतिहास में खास। बात उस शख्सियत की जिसने आजाद भारत के सपने को दिशा दी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 27 मई 1964, यानी वो दिन जब भारत ने अपने पहले प्रधानमंत्री को खो दिया, लेकिन उनका विजन, उनकी सोच और देश के लिए किए गए कार्य आज भी भारत की नींव में जीवित है। श्रोताओं, उनका मानना था देश निर्माण के लिए निरंतर कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आजाद भारत की मजबूत

नींव रखने में नेहरू जी का योगदान स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, गरीबी, अशिक्षा और विकास की कमी। ऐसे समय में नेहरू जी ने मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का सपना देखा। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों और बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उनके कार्यकाल में भाखड़ा, नागल जैसे विशाल बांध बने, स्टील प्लांट स्थापित हुए और वैज्ञानिक विकास को नई दिशा मिली। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। श्रोताओं, नेहरू जी मानते थे कि देश का भविष्य उसकी शिक्षा और युवाओं में बसता है। इसी सोच के साथ उन्होंने कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs की शुरुआत की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMS की अवधारणा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR को मजबूती प्रदान करना। और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। दोस्तों, उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम याद करते हैं उस नेता को जिसने सिर्फ आजादी का सपना नहीं देखा बल्कि एक आधुनिक, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रखी। दोस्तों, इसी के साथ वक्त से आपसे इजाजत लेने का इशारा मिल रहा है, तो दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे किसी सुबह ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।

0: जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुए से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण।

0: लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में कल ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया।
3: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की उपलब्धि के बारे में चर्चा की।
4: जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के

0: हमारी पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था।
1: मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर कल प्रयागराज में संगम तट पर मां गंगा का दर्शन पूजन किया और आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री योगी ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला है, हमें इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
0: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिनभर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कल भी दिनभर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप और भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है।

0: जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं वायलिन वादन। कलाकार हैं पंडित वी जी जोग। राग है अहीर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद साबिर खान।

अभी आपने पंडित वी जी जोग का वायलिन पर बजाया राग अहीर भैरव सुना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद साबिर खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

0: सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में

बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया

0: किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के TV चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले दो से तीन दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब

0: राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून एक या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the Member Secretary.

0: Rabada and Jason Holder took 2 wickets each. Rajat Patidar was adjudged the player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator in New Chandigarh, Mohali at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Pramod. Quad announces energy initiative, Fiji Port Project, headlines the Hindustan Times. While the Tribune headlines committed to free and open Indo-Pacific, Quad unveils energy security initiative. And the Asian Age headlines, Quad unveils 4 key initiatives, expands energy, maritime ties. Another major story covered in most newspapers is the U.S. self-defense strikes casting shadow on Iran peace talks. The Asian Age headlines, talks under strain as U.S. strikes Iran, Tehran to retaliate. While the Tribune headlines, deal to end war may take a few days, says Rubio as U.S. strikes Iran again. The government forming panel on demographic changes caused due to infiltration is also a major story covered on the front page of most newspapers. The Times of India headlines, government panel to examine demographic changes. And the Hindu says, panel set up to study demographic change. The Indian Express headlines, HDFC Bank camouflaged crores as marketing spent to pay higher interest to state firm. The paper adds that violating RBI and bank norms, 45 crore extra interest was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express in its editorial titled, India First Can Converge with America First, writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America-first policy and said that Delhi too is guided by an India-first approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी सरकार ने दरंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरेसानी को चैलेंज किया गया है। सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटन्स को 92 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर मस्कूरा कमेटी की सदारत करेंगे। मरदमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक आई

0: एस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर मुआशियात डॉक्टर शामिका रवि को कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में फॉरेनर्स वन डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमनो कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली मुआशरे के तहफ्फुज़ से भी वाबस्ता है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
1: आला सतह की ये कमेटी गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का जाम जायजा लेगी। ये कमेटी मजहबी और समाजी तबकों की सतह पर आबादी में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के रुझान का तजज़िया भी करेगी और इसके लिए एक मनसूबा बंद और मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा होने वाला हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से यौम आज़ादी के अपने खिताब में आबादी के तनासुब के एतबार से होने वाली तब्दीली के बारे में आला सतह की कमेटी का ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहा है। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर ज़रूरी हुआ तो कमेटी की मुद्दत में 6 माह की तौसी की जा सकती है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी SIR के कानूनी जवाब को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस चोयमालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच आज अपने फैसले का ऐलान करेगी। मस्कूरा बेंच ने तफसीली समाअत के बाद इस साल के अवाइल में इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। इन दरखास्तों में इंतखाबी कमीशन की जानिब से SIR के अमल के कानूनी जवाब को ये दलील पेश करते हुए चैलेंज किया गया है कि वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी का ये अमल आइन की दफा 326, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और बाद में मुरतब किए गए जाब्तों के तहत चुनाव कमीशन को हासिल इख्तियारात से तजावुज करता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में SIR अमल से मुतासिर होने वाले राय दहिंदगान की मुश्किलात दूर करने और शफाफियत को फरोग देने की खातिर उबूरी हिदायत जारी की थीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने यह वजाहत की है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए उसके हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कोताही नहीं हुई है। बोर्ड ने कहा है कि दाखिली जांच और नजरसानी के मकासद के लिए सैंपल डेटा के साथ URL cbse.onmarks.co.in सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: CBSE ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो URL सर्कुलेट किया जा रहा है वो इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए पोर्टल से मुख्तलिफ है। बोर्ड ने कहा है कि शिकायत के इजाले के लिए मजबूत निजाम के साथ असेसमेंट में शफाफियत बढ़ाने की खातिर ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम नाफिज किया गया है। CBSE ने अपने हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में किसी तरह की सिक्योरिटी खिलाफवर्जी के दावों को खारिज करते हुए सभी मुतालिका अफराद को फिर यकीन दिलाया है कि जांच के प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सभी तहफ़ुज़ात नाफिज किए गए हैं। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज सुबह नाथुला पास जाएंगी। सदर जमहूरिया नाथुला में तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी और इस दौरान फौज के आला अहलकार उन्हें इलाके की मुख्तलिफ सरगर्मियों से वाकिफ कराएंगे। सदर जमहूरिया बाबा हरभजन की दरगाह भी जाएंगी। बाद में दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू गंगटोक में मनन केंद्र में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकरीबे तकसीम असनाद के दौरान तलबा को डिग्री और तमगों से सरफराज करेंगी। 33 डिपार्टमेंट से वाबस्ता तकरीबन 14,000 डिग्रियां दी जाएंगी जिनमें 199 खवातीन समेत 285 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। कल सदर जमहूरिया ने ऑर्किडेरियम और नामग्याल

0: इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी का दौरा किया था। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर अहलकारों ने ऑर्किडेरियम में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोलकाता की एक खसूसी अदालत ने मालदा के मोथाबारी इलाके में जुडिशल अफसरान पर हमले के मामले में मजीद 15 अफराद को 5 जून तक कौमी जांच एजेंसी की तहवील में भेज दिया है। पीर की रात को मोथाबारी और आसपास के इलाकों में मरकजी एजेंसी की छापे मारने की कार्रवाई के दौरान इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान NIA ने इस मामले के सिलसिले में 2 केस डायरियां पेश की। NIA के जराये के मुताबिक इस वाकये के दिन की CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स का तज्जिया करने के बाद मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई। एजेंसी ने मजीद छानबीन के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 15 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हम मनसब पैनी वोंग के साथ 17वें वज़राए खारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुल काहिल मगरबी एशिया की सूरत हाल और दीगर इलाकाई आलमी और कसीर जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा भी लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जौहरी तवानाई पैदा करते हुए यूरेनियम की फराहमी समेत तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून के केरलम पहुंचने में 1-2 दिन की ताखीर हो सकती है। इससे पहले मानसून के कल वहां पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तफसील हमारे नामा निकाज से।
1: केरलम के जुनूबी हिस्से में कुछ इलाकों में आज सुबह तक 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर मकामात और लक्षद्वीप में कोई बारिश नहीं हुई। केरलम में फिलहाल अगले 4 दिन तक तेज बारिश होने की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। इससे पहले वहां मॉनसून के 26 मई को पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने की खातिर मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल, तेजी के साथ अमल दरामद और सख्ती के साथ निफाज की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की खातिर किए जाने वाले इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ जायजा मीटिंग की। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं, जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। अमेजोन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिनका इंतखाब मशीनें तैयार करने के लिए किया गया है। अमरीका का ये मंसूबा है कि साल 2028 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अमरीकी खलाबाजों को फिर से चांद पर भेजा जाए। रेलवे की वजारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली DEMU ट्रेन के लॉन्च की मंजूरी दे दी है। इसमें 10 रेल डिब्बे होंगे। ये इकदाम रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार ट्रांसपोर्टेशन को फरोग देने की सम्त एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निजाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स

0: और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुईं, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज्यादातर पुरमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, कादियान और शाम चौरासी के म्यूनिसिपल काउंसिल हलकों में 13 जून को इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से दिए गए 255 रन के बड़े निशाने का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 3 गेंद रहते 162 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबले होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली।
1: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में होने वाली क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग को अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में अहम समझौते। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सलामती में क्वाड रोल निभाएगा। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ अरफात की अदायगी के मौके पर दुनिया भर से लाखों हुजाज इकराम के मैदान अरफात में जमा होने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबार ने पहले सफ़े पर जगह दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दिए जाने और नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाया करते हुए इन 12 सालों को कौमी खिदमत, अच्छी हुक्मरानी, खुद इन्हेजारी, गरीबों की फलाह बहबूद और हिंदुस्तान की आलमी साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दौर करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के बैन अलावी सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बनाने के बयान को दूसरी सबसे अहम खबर बनाई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी को चैलेंज किया गया है। CBSE ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। इस कार्यक्रम में गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658,
9: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

नमस्कार दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा। इस पपीहे की आवाज़ सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मौसम कितना खूबसूरत और सुहावना होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम और आप इस समय जिस गर्मी और उमस को महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, वो किसी से भी छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम आपको रोकते हैं। इसी में तो छुपा है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, यानी ज़िंदगी की खूबसूरती की कहानी। तो क्योंकि ज़िंदगी हमसे क्या कहती है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, क्योंकि थोड़े ही समय में ये समय बीत जाएगा और फिर से आएंगे खूबसूरत दिन।

चूंकि हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं, हमारा पूरा जीवन प्रकृति से ही चलता है, प्रकृति से ही जुड़ा है। चाहे हमें भोजन की ज़रूरत हो, पानी, हवा या फिर रहने के लिए घर ही क्यों न बनाना हो, हमें हर कुछ प्रकृति से ही मिलता है। तो फिर हम क्यों प्रकृति की उपेक्षा करते हैं? यानी कि अपनी हरी भरी धरती को हम खुद ही प्रदूषित करते हैं। ये एक सोचनीय प्रश्न है। क्या हमारी ये मूर्खता को नहीं दर्शाता कि हम जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को अपने ही हाथों से काट रहे हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें,
8: 0542227658।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
9: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों, जिस प्रकार हमारा पूरा जीवन प्रकृति से जुड़ा होता है, ठीक उसी तरह जीवन जीने के लिए इंसान को इंसान की भी ज़रूरत होती है। व्यक्ति को किसी न किसी ऐसे की तलाश होती है जो उसके मन की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सके और उसके हर सुख दुख में शामिल हो सके।

तो दोस्तों, चलते चलते आपसे यही कहना है कि पृथ्वी है तो आसमान है, प्यास है तो नदी है, भूख भूख है तो भोजन है। दुनिया में कुछ भी अकेला नहीं है, सबका कोई ना कोई साथी है। तो प्यार करिए अपनी प्रकृति से, अपने पर्यावरण से और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का ख्याल रखें। और हाँ, अपना ख्याल रखना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगले कार्यक्रम में फिर मिलने के वादे के साथ स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी सुषमा गुप्ता का नमस्कार।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
3: जनपद उन्नाव में भीषण गर्मी से तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लू हीट वेव का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जहां भीषण गर्मी और तापमान से जिला अस्पताल में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है, वहीं ओपीडी में रोज लगभग 1200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने जिले के सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए गए हैं। वहीं हीट वेव से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि अत्यधिक तेज धूप में बाहर न निकलें। विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलते समय सिर एवं शरीर को ढकें, टोपी, गमछा, दुपट्टा या छाते का प्रयोग अवश्य करें। पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेट रखने हेतु दिन भर पानी पीते रहें। ORS, शिकंजी, आमपना, नींबू पानी आदि का सेवन लाभकारी है। वहीं प्रशासन ने खेतों में कार्य करने वाले कृषकों को दोपहर में कार्य न करने की सलाह दी है। वह पशुओं को छायादार स्थान पर बांधने तथा उन्हें पर्याप्त पानी पिलाते रहें। घरों की छतों पर पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें तथा किसी भी प्रकार की आपात सहायता है तो कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर संचालित कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। जिले में सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। सांसद साक्षी महाराज ने इस परियोजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक बनाना है, जिससे क्षेत्रीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य

0: सरकार सड़क तथा आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क के चौड़ीकरण से आवागमन में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति मिलने से जनता में खुशी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क से ग्रामीण क्षेत्रों की जिला मुख्यालय और अन्य शहरों से जुड़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतियों में तेजी आएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क निर्माण परियोजना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना है कि मार्ग के चौड़ीकरण से आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे भारी वाहनों और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले के निराला प्रेक्षागृह में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जन प्रतिनिधि, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में लगभग 1300 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि
1: जनपद में लगभग 1300 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और जो उनका मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है उसी क्रम में ये प्रोग्राम किया गया था। कुछ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम लोग ने मंच पे भी उन सम्मानित किया और इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और साथ ही जो हमारी शिक्षा का जो स्तर है उसको और हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे।
0: यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में की गई वृद्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम से सकारात्मक संदेश जाएगा और जिले की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र हौरा में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने की। इस अवसर पर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, आम उत्पादक, व्यापारिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम उत्पादकों, व्यापारियों और संबंधित संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था। इसका लक्ष्य आम उत्पादक, भंडारण और विपणन जैसी जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके समाधान खोजना था। प्रतिभागियों ने आम की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर विपणन व्यवस्था स्थापित करने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने कहा कि प्रशासन किसानों और आम उत्पादकों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का।
3: हीट वेव के प्रकोप से भदोही समेत पूर्वांचल के कई जिले तप रहे हैं। जिले में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुँच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तमाम उपाय अपनाने पर मजबूर हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी और चेतावनी के अनुसार भदोही उन जनपदों में शामिल है जहां भीषण ग्रीष्म लहर की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन विभाग और जिला अधिकारी कार्यालय आपदा मित्रों के माध्यम से गांव और शहर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा, गर्मी अपने चरम पे है, लोग 12 से 4 बजे के बीच बाहर से निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें और चेहरे और शरीर को ढककर ही बाहर आएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव वार्ड और ORS काउंटर संचालित किया जाए, जबकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम और वाटर स्प्रे के जरिए भी राहत और जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया,
4: इस समय जो है गर्मी अपने चरम पर है और इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश ये करें कि दोपहर में 12 से 4 अपने कार्य जो आउटसाइड के हैं उनको न करें, उसके पहले अथवा उसके बाद में ही जो है इस तरह के कार्य करें। दूसरे आवश्यक यह है कि अपना हाइड्रेशन बना करके रखने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पानी पिए, चेहरे को शरीर को पूरी तरीके से ढक करके ही अगर अवश्यंभावी स्थिति है तभी निकला जाए।
3: भदोही के युवा क्रिकेटर हर्ष दुबे का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए उन्हें टीम में 15वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। हर्ष गोपीगंज नगर के समीप तिलंगा गांव के निवासी हैं। उनके चयन की खबर मिलते ही परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। हर्ष ने क्रिकेट में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वे विदर्भ की ओर से अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में एक सीजन में उन्होंने 69 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उनका चयन इंडिया टीम ए में हुआ। वर्तमान में वे IPL

0: सनराइज हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं। उनके पिता सुरेंद्र भी पहले सीआईएसएफ में तैनात थे, अब परिवार नागपुर में रहता है। हर्ष की सफलता से भदोही जिले के युवाओं को प्रेरणा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले को नई उपलब्धि मिली है। काशी नरेश राज की विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि
1: ये बहुत पुराना कॉलेज है, आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। तो इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
0: भदोही जिले में विकास कार्यों को गति मिल रही है। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को शिवनाथ धाम से जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 21.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। सड़क चौड़ी होने से लगभग 20 गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भदोही जिले की सहकारी समितियों की जीर्णोद्धार की योजना शुरू की गई है। शासन ने 11 समितियों के नवीनीकरण के लिए 1.3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। प्रत्येक समिति पर लगभग 9.40 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले में कुल 52 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से अधिकांश भवन काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन समितियों के माध्यम से किसान को खाद, बीज और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। धान और गेहूं खरीद का कार्य भी इन्हीं केंद्रों पर होता है। भवन जर्जर होने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इनके नवीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही समितियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। उद्योग क्षेत्र में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रिलीफ योजना नामक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भदोही का कालीन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी सहायता से उद्योग को मजबूती मिलने की संभावना है। इससे भदोही के कालीन निर्यातकों को राहत मिलेगी।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अशरत अली पुत्र शेखावत अली निवासी बलुआवीर विशेश्वरगंज नवापुरा थाना आदमपुर वाराणसी 11 अप्रैल 2026 से लापता हैं और इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 20 साल, रंग सांवला, लंबाई 5 फीट 5 इंच, इनके आँख के पास चोट का निशान है, ये दिमाग से थोड़ी कमज़ोर हैं और घटना के समय इन्होंने सफ़ेद रंग की शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक रंग का गमछा लिए हुए थे। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नज़दीकी थाना या थाना आदमपुर वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

थाना आदमपुर से प्राप्त सूचना के ही अनुसार रेणु कुमारी गुप्ता, पुत्री जवाहर गुप्ता, निवासिनी मुकीमगंज वाराणसी, 28 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है।

इनकी उम्र है 28 वर्ष, रंग गोरा, कद 4 साढ़े 4 फिट है। घटना के समय इन्होंने ग्रे रंग का सूट पहन रखा था। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नज़दीकी थाना या थाना आदमपुर को सूचित कर सकते हैं।

एक और सूचना हमें थाना आदमपुर जनपद वाराणसी से ही प्राप्त हुई है। इसके अनुसार राधा देवी पत्नी ब्रजेश कुमार निवासिनी चंदूपुरा बलुआवीर विशेश्वरगंज जिला वाराणसी 10 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 35 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, रंग सांवला, एकहरा बदन, चेहरा लंबा। विशिष्ट पहचान इनका ये है कि इनके पैरों की अंगुलियां विकृत हैं, आंखें गहरी और काली हैं, घने काले बाल हैं। घटना के समय इन्होंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और अपने साथ ये 4 वर्षीय पुत्री अंतिका गुनगुन को साथ ले गई। पुत्री का नाम अंतिका गुनगुन है। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नज़दीकी थाना या थाना आदमपुर जनपद वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। सूचना संपन्न हुई।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: पढ़िए, लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
2: उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। हज बैतुल्लाह और ईद उल अज़हा के हवाले से समाअत फरमाइए। ये खुसूसी तमसीली प्रोग्राम उनवान है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को।

का न दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। लज्जत इबादत की, लज्जत तौहीद की, लज्जत बारगाह खुदावंदी में खुद सुपुर्दगी की, लज्जत इश्क रसूल की, लज्जत सजदा तलावत की, कुर्बानी की। ये लज्जत इंसान को मैसर आ जाए तो दुनिया बाजीचाए अतफाल है उसके आगे। ये वो आग है जो भड़के तो अक्ल महवे तमाशा रह जाए और आतिश नमरूद गुलजार हो जाए। हज बैतुल्लाह और ईद उल अज़हा भी इसी लज़्ज़त आशनाई और इश्क इलाही का मज़हर है। तारीख़ इंसानी का एक अजीम बाब इससे वाबस्ता है जो सुन्नत इब्राहिमी के नाम से मौसूम है। हज बैतुल्लाह इस्लाम का पांचवां अजीम शान रुकन है जो इंसानियत को रंगो नस्ल, ज़ात पात, ऊंच नीच और अदना वाला के फ़र्क को दूर करके उनके अंदर इज्तमाई मोहब्बत और उखुवत की फ़िज़ा को हमवार करता है। हज बैतुल्लाह अमन व शांति का मजहर है और अजीम मसावात का अलम्बरदार है। काबिल मुबारकबाद हैं अल्लाह के वो बंदे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त

दए जहां में सूदो जया की फिक्र से बालातर होकर दीवानावार अपने खालिक के हुजूर आबला पा निकला था। उसने जिस जज्बे के तहत ये शौक सफर शुरू किया था वो सफर सफर इश्क इलाही से इबारत है, जिसका वरक वरक इसार और हर्फ हर्फ कुर्बानी है। उस मर्द हक आगाह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दास्तान सादा में राज जिंदगी पिन्हा है। उसकी जात से वाबस्ता है एक घर, अल्लाह का एक ऐसा घर जो रुश्द हिदायत का मरकज है। उसने एक शहर अमा बसाया, एक जाय अमन। उसने अपने फर्जंदे अर्जुमन हजरत इस्माइल जबीउल्लाह के साथ मिलकर खुदा के उस घर की तामीर किया, जिसके तवाफ में आज भी दुनिया वज्द कुना है। जोक दर जोक सैलाब इंसानी खाने काबा के तवाफ के लिए खींचा चला आ रहा है। ये सब उसी जाते लाजवाल का करिश्मा कुदरत है, जिसकी मदासराई में कायनात का जर्रा जर्रा महो है। बेशक उसकी जात लाजवाल है।

तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तू मेरा कोई नहीं था।

इश्क था। मुलाज़िम फरमाए, सब जवानों में जवां था हुस्न और सब जवानों में जवां था

0: था, इश्क था।
1: डॉक्टर कलीम कैसर के इन अशार के साथ सामाईन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपके समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज़ पर तैयार किया गया था।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मंगला विश्वकर्मा। पहले हम इनके स्वर में सुनेंगे ये देवी गीत, लेकिन ये देवी गीत सुनने से पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।

0: ये लोक भजन आपने मंगला विश्वकर्मा के स्वर में सुना और इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कार्यक्रम झंकार में पहला गीत हमने आपको सुनवाया जब प्यार किस जब वी मेट फिल्म से, आवाज मोहित चौहान की थी, शब्द रचना

निशात कामिल की और संगीत निर्देशन प्रीतम का था। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म से आवाज कुमार शानू की है, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

आशिकी फिल्म से ये गीत आपने सुना कुमार शानू की आवाज़ में। गीतकार थे समीर संगीतकार नदीम श्रवण। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिज़ा फिल्म से, आवाज़ उदित नारायण अलका याग्निक की, शब्द रचना गुलजार की है, संगीत निर्देशन अनु मलिक का।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस AIRVNS@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, अब आप मेल के जरिए भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस में आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचानी है AIRVNS@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS के बाद अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए भी, और सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो अब हम हैं आपके साथ हर घड़ी, हर पल और हर प्लेटफॉर्म पर। आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुँचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें A और V कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए

जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।

ढाई अक्षर प्रेम का, इस फिल्म से ये गीत आपने सुना, आवाज़ अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की थी। गीतकार समीर, संगीतकार जतिन ललित। और कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, दिल चाहता है फिल्म से आवाज़ें, अलका याग्निक और उदित नारायण की है, और शब्द रचना जावेद अख्तर की है, और संगीत निर्देशन शंकर एहसान लॉय का है।

दिल चाहता है इस फिल्म से आपने ये गीत सुना। आवाज़ अलका याग्निक उदित नारायण की थी। अगला गीत सुनिए देवदास फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है श्रेया घोषाल ने, और इस गीत को लिखा है नुसरत बद्र ने और इसे संगीतबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने।

ये गीत आपने डर फिल्म से सुना, आवाज लता मंगेशकर और ए हरिहरन की थी, और शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन शिव हरि का। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, और संगीत निर्देशन है जतिन ललित का और शब्द रचना है आनंद बख्शी।

अभी आपने सुना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से जो गीत सुना उसे आवाज दी थी कुमार शानू और लता मंगेशकर ने। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुनेंगे कभी खुशी कभी गम फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की। बोल समीर के और संगीत निर्देशन जतिन ललित का है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। हमारा अगला कार्यक्रम फरमाइसी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे एक छोटी सी अंतराल के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आपके पहले से आए हुए ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइसी गीत एक्सप्रेस का। और ये कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं, यानी आपकी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपको तो वैसे पता ही होगा हमारी ईमेल आईडी, लेकिन अभी जो हमसे हमारे नए श्रोता जुड़े हैं, एक बार उन सभी श्रोताओं को अपनी ईमेल आईडी हम बता दें जिसमें आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है airvnsfgexp@gmail.com। एक बार फिर से आपको बता दें airvnsfgexp@gmail.com। तो बिल्कुल देर न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं फिल्म से इस गीत के साथ। श्रोताओं के नाम हम इस गीत के बाद बताएंगे। तो पहुंच रहा है आपके पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट तक।

सबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है और गीत लिखा है SH बिहारी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं।

इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, सुकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। आलोक कुमार श्रीवास्तव ने भेजा है सारनाथ वाराणसी से। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दर्शाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और भिट्टा बजाज। इसी गीत को सुनना चाहा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके।

इसी गीत को सुनना चाहा है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जलंधर से।

श्रोताओं आप लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म भीगी पलके से, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है एमजी हशमत ने और संगीत है जुगल किशोर का।

भीगी पल के इस फिल्म के गीत के लिए फरमाइश भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केसु रिधान खुराना।

मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा।

पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा।

इसी गीत को सुनना चाहा है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने।

ओजस्वी यादव ने। आप सुन रहे हैं फरमाइसी गीत एक्सप्रेस, अपनी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी के साथ। और आप भी हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा ईमेल एड्रेस। हमारा ईमेल एड्रेस है airvnsfgexp@gmail.com। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म सौदागर से, आवाज आशा भोसले की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

सौदागर फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। पड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने।

दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफा नास और बेबी चाहत ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद ने। ये हमारे श्रोता है बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से हमारे ये श्रोता मुन्ना भगत, गुड्डी भगत।

इसी गीत को सुनना चाहा है। मंजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अनिरुद्ध, गुड़िया रानी और गुड्डू कुमार गुप्ता ने। इसी गीत को सुनने के लिए संदेश भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता वोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बूट ने।

मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती कुमारी और कुमकुम ने।

श्रोताओं आप लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म सड़क से, आवाज कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

सड़क फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या ने।

वाड़ी खाम गांव से, अनंता वाड़ी, रामेश्वर वाड़ी, शुभम, साक्षी, साक्षी और खुशी समस्त वाड़ी परिवार ने।

मारहरा दरवाजा एटासी नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी नवीद हसन अब्बासी रसीद वारसी और सुहेल हसन अब्बासी ने। सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत इसरत परवीन ने।

ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिनाथ त्रिपाठी राखी आर्या इंद्री ओमनाथ सारंग शिवांश शिवांग रोली अदिति और उनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम दादू ने। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन ने। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने।

टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार।

खेरा, विष्णु विशु खेरा, लाडली खेरा, शालिनी खेरा, त्वनिशी खेरा और वानी खेरा।

इसी गीत को सुनना चाहा है गोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुस्मिता साहू और दीपिका साहू ने। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए फिल्म साजन का घर फिल्म से ये गीत। आवाज अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीत है समीर का और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

साजन का घर इस फिल्म के लिए फरमाइश भेजी है हमारे श्रोताओं ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिसानी और निमित ने।

रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसूल कमर राही, बेगम रुखसार, राकिबा शाहीन, तुबा आफरीन और समीम अख्तर ने।

वाड़ी खामगांव से अनंता वाड़े, रामेश्वर वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार में। शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्ण।

सरकार ने। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा ने। सोनवर्षा खानपुर, चुनार मिर्जापुर से अनीस राजभर, मनीष राजभर और आशीष राजभर, और इन्हीं के साथ हैं आकर्ष राजभर ने।

नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ ने।

इसी गीत को सुनना चाहा है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रीफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज।

वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस उर्फ डाक बाबू, बेगम इसरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा, कलेस बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन ने। इसी गीत को सुनना चाहे हमारे इन श्रोताओं ने नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू ने। लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने।

श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म संगम से, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

संगम फिल्म के इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है हमारे श्रोताओं ने। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से, स्टेशन रोड जमानिया से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल ने। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल ने।

दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से श्रीमती रेखा देवी बसंतलाल साव गुड्डू कुमार गुप्ता पेहरा बाजार झुमरी तलैया से शिवानी कुमारी प्रियंका कुमारी साहू और मुन्नी देवी शाह ने गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैनी पवार और मनीष पवार ने

चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी पटवा, ये श्रोता है हमारे धरदेई सरगाम छत्तीसगढ़ से। रामनगर कदमा जमशेदपुर से, मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल और चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। गांजीपुर गांव नारी पंचदेवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का ये था आखिरी गीत और आप सभी श्रोताओं के संदेश हमने पढ़े और जिन श्रोताओं के संदेश हम नहीं पढ़ पाए हैं इनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और श्रोताओं, आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं अपने गीत और संगीत की फरमाइश भेजने के लिए। इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। हमारा पता है yarvnsfgexp@gmail.com और आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भी भेज सकते हैं और हमारी इसकी ईमेल आईडी है pkldaiarvaranasi@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अपनी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी को अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बज रहे हैं। अब लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ऑटोमन साम्राज्य

0: राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था।
1: जी।
0: बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
1: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3,000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
0: जी
1: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है,
0: जैसे
1: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
0: जी
1: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
0: जी इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
1: जी
0: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
1: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो यह है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
0: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
1: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
0: हाँ, वो क्या?
1: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
0: ये घटना क्या थी?
1: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओ, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
1: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
0: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए

0: की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना

0: रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
7: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
6: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
7: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
6: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
8: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
7: क्या बात है,
8: सुनकर ही जोश आ गया।
7: हाँ
8: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर

0: आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
1: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन बात

0: 18 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140

0: की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
0: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
2: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो। दुर्गा माता की
5: जय।
4: भारत माता की
5: जय।
4: चलो
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
6: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
6: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
6: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर

0: चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेश के बाद।
4: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
9: 0542227658।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत धनंजय कुशवाहा के गाए भजन। सबसे पहले लीजिए सुनिए सूरदास के भजन।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और आज के कलाकार हैं धनंजय कुशवाहा। इन्हीं के स्वर में लीजिए सुनिए अब कबीर दास के भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत धनंजय कुशवाहा के गाए भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत वायलिन वादन। आज के कलाकार हैं पंडित वी जी जोग, राग है पीलू में धुन। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित किशन महाराज, और तानपुरा पर साथ दिया है आर के श्रीनिवास ने।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत वायलिन वादन। आज के कलाकार थे पंडित वीजी जोग, राग था पीलू में धुन। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित किशन महाराज और तानपुरा पर साथ दिया था आर के श्रीनिवास ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों और हमारे केंद्र से अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार धीरज साहनी पुत्र राजकुमार साहनी उर्फ पहाड़ी खुजवा बाजार वाराणसी नियर पोस्ट ऑफिस से दिनांक 25 जून 2025 से शाम 6 बजे से लापता है। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 27 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फुट 2 इंच है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना भेलूपुर वाराणसी को सूचित करें। अब लीजिए सुनिए अगली सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना सिंधोरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सागरपाल पुत्र राम विलास पाल दीनदासपुर पोस्ट उदार थाना सिंधोरा जिला वाराणसी से दिनांक 1 जुलाई 2025 सुबह 5 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 25 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फुट 3 इंच है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना सिंधोरा वाराणसी को सूचित करें। थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अनीता देवी पत्नी राजेश गुप्ता थाना जैतपुरा से दिनांक 23 जून 2025 रात 8 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 36 वर्ष, लंबाई 4 फुट 5 इंच है। इनका रंग गोरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना जैतपुरा वाराणसी को सूचित करें। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे वट वृक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी, जानकारी देंगे मनीष यादव। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन। 11 फिल्म में गीत गजलों का कार्यक्रम मंजमन हम लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रेवती सागलकर की गाई गजलें। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें आज की बातचीत का विषय है औद्योगिक फसलों का जैविक नियंत्रण। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सुहानापुरी गोस्वामी से सतीश कुमार यादव। इसी में श्रोता सुनेंगे मंगल विश्वकर्मा के गाए लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे दिन 1:45 पर।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाड़े आप सुनेंगे शाम 5:15 से, जिसमें गीत संगीत के साथ श्रोता सुनेंगे आज की बात यूथ डायरी, मार्गदर्शन इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दोपहर 2:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर, जिसमें गीत संगीत के साथ आज की वार्ता का विषय है लू से बच्चों को कैसे बचाएं। इस विषय पर डॉक्टर प्रशांत से आकांक्षा सिंह की बातचीत आप सुनेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: यह हादसा रायबरेली जिले के सलोन थाना हल्के के रसूलपुर गांव के नजदीक पेश आया, जब दिल्ली से जौनपुर लौट रहे कुनबे की तेज रफ्तार कार गंगा एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। रियासत में कल भी दिन भर तेज धूप, शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहा, मगर शदीद गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से राहत भरी खबर है। महकमे के मुताबिक मगरबी खलल के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश के भी इम्कान है। इससे दर्ज हरारत में गिरावट के साथ साथ तपिश से भी राहत मिलेगी। कल दारुलहुकूमत लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.9 और कम से कम दर्ज हरारत 28.3 डिग्री दर्ज किया गया। बांदा एक मरतबा फिर से पूरे मुल्क में सबसे गर्म रहा, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर की 1:15 हो रहे हैं। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों के बाद,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृहलक्ष्मी।
4: की तरह दिन पलटते जा रहे हैं, खबर नहीं कि ये आ रहे हैं या जा रहे हैं। बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने। बहुत बहुत स्वागत है सखियों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुखदा पालंदे।
5: और मैं हूँ अंजना।
4: वास्तव में अंजना, देखो हम जिंदगी के पन्नों को एक एक दिन पलट ही तो रहे हैं, है ना। कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी गम के बादल, और धीरे धीरे ये सफर ऐसे ही चल रहा है।
5: बिल्कुल सुखदा, ये जो हमारा जीवन है ना, असल में किसी ड्रामे से कम नहीं है ना। हर दिन हम किसी न किसी चीजों में उलझे ही रहते हैं।
4: बिल्कुल,
5: हर दिन कुछ न कुछ ऐसे पहलू आते ही रहते हैं, लेकिन सखियों फिर भी हमें अपनी भूमिका निभानी ही पड़ती है ना।
4: क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव दोनों ही वरदान है। ये उतार चढ़ाव ही आपको ये बताते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, क्या मायने रखता है। ऊंच नीच आपको सीखने, आगे बढ़ने और अपनी क्षमताओं को निखारने और उस व्यक्ति के रूप में विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं जो आपको बनना चाहिए।
5: बिल्कुल, और ये हमें समझने की भी जरूरत है कि हर किसी के जीवन में उथल पुथल होती रहती है, उतार चढ़ाव होता रहता है ना।
4: बिल्कुल,
5: और नए नए ट्विस्ट भी तो आते रहते हैं। बस उस समय थोड़ा धीरज रखने की जरूरत होती है और चीजों को एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए ना सुखदा। हम परिवार में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, जरूरी नहीं हर व्यक्ति से हमारे विचार मिले, लेकिन हर रिश्ते में हमें ही सामंजस्य बिठाना आना चाहिए ना। कभी कभी आपस में किसी बात की कहासुनी भी हो जाती है, तो ऐसे में बातों को इग्नोर कर देना चाहिए ताकि रिश्ता बचा रहे और रिश्तों में खटास ना हो।
4: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी का जो फलसफा है वो जीवन का वो गहरा दर्शन है जो हमें ये सिखाता है कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये बात तो अंजना हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। इसका मूल मंत्र है संघर्ष में अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, वर्तमान में जीना और हर परिस्थिति में सुकून तलाशते हुए आगे बढ़ना। जीवन उतार चढ़ाव का एक सफर है और जिंदगी के दामन में खुशियां और गम दोनों ही तो शामिल है। सच तो ये है कि हम जो चाहते हैं हमेशा वही नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही समझदारी है।
5: बिल्कुल सुखदा, जिंदगी कभी भी एक जैसी रह नहीं सकती, क्योंकि समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं ना। आज जो स्थिति बहुत शांत और अच्छी लग रही है ना, कल उसमें नया मोड़ आ जाता है और हमें असहज महसूस कराता है। तो ऐसे में हमें परिवर्तनशीलता को भी अपनाना आना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रह सकती सखियों। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, क्योंकि है ना।
4: बिल्कुल बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि भविष्य की योजनाओं में उलझ कर कल क्या होगा, कैसे करेंगे, इन सबको छोड़कर आज को नहीं खोना चाहिए। सुकून अक्सर छोटी छोटी बातों में ही छिपा रहता है, जैसे बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ समय बिताना, बारिश की बूंदों का एहसास करना। और जब आप कामयाबी की बुलंदियों पर हो ना, तो दूसरों का हाथ थामना कभी ना भूलें, क्योंकि इंसानियत और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही जीवन सार्थक बनता है। वैसे अंजना, मैंने बहुत से लोगों को गहरी जो ऐसे जो लोग होते हैं, बाहरी दोष जैसे कि भाग्य

0: मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ग्रह नक्षत्र कुंडली में क्या है, इन बातों में ही उलझे हुए रहते हैं। बल्कि इन बातों के बजाय वो अपने कर्मों को सुधारना सबसे बड़ा फलसफा है, क्योंकि सकारात्मक विचारों से बड़ा हालात को भी बदला जा सकता है।
1: बिल्कुल सिद्धा, इसके साथ ही जीवन में धैर्य और संयम की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकना चाहिए, शांत दिमाग से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो समझिए सखियों, आपकी आधी समस्याएं तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी।
0: क्योंकि असली ज़िंदगी वो है जिसे आप पल पल महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी हो, हंसी हो, दुख हो या आंसू हो। ये सब डिजिटल दुनिया जैसे सोशल मीडिया से बनाई गई है परफेक्ट छवि नहीं होती, बल्कि वास्तविक और कभी कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस है।
1: बिल्कुल सुद्धा, ये जो जीवन है ये ड्रामा ही तो है ना, जो कि एक कहानी बनाता है। अगर जीवन में सब कुछ सीधा सीधा और शांत रहेगा तो जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाएगी।
0: बिल्कुल, जिंदगी अकेले काटने का नाम ही तो नहीं है, वो तो सबके साथ रहना चाहिए। ये आपके परिवार, प्यार, दोस्ती और समाज के साथ गहरे संबंधों को निभाने और एक दूसरे के काम आने में निहित है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

0: तो मिस
1: मिस सीमा
0: जी
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट
1: 1,00,000 दो बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: सुनो ना
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे
7: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है मैं बताती हूँ नंबर नोट करो
9: 0542227658
10: 0542227658
7: लो अभी फोन लगाता हूँ
10: 0542227658
11: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
12: कितनी गर्मी है ना अंजना।
13: बहुत ज्यादा सुविधा बाहर तो इतना लू भी चल रहा है ना।
12: तुमने फेस कवर किया था अपना?
13: हाँ हाँ जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना फेस कवर किए बिना नहीं निकलती हूँ और चश्मा लगा के भाई तो जरूर निकलती हूँ ना।
12: और लू और भीषण गर्मी से बचाव के तो ये तो सेहत के लिए बहुत जरूरी है ना क्योंकि अत्यधिक तापमान से हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है।
13: ऐसे में जब सखियों गर्मी में बाहर निकलिए तो फेस को कवर करके तो बिल्कुल निकलिए और सनस्क्रीन भी लगा लीजिए है ना और पानी तो खूब पीजिए और बॉटल भी साथ में रखिए है ना।
12: बिल्कुल और अगर हो सके
13: हाँ।
12: तो हल्का और सुपाच्य भोजन ही कीजिए और ऑयली खाना न खाइए। और अंजना एक बात बताऊँ मसालेदार भोजन जैसे देख लिया या सूंघ लिया तो मन होता है खाने
13: हाँ,
12: का
13: लेकिन खाना नहीं चाहिए इस समय सुपाच्य भोजन ही करना सही रहेगा है ना। और सखियों अगर जरूरी न हो तो घर से आप 11 बजे से 4 बजे के बीच बिल्कुल भी ना निकले है ना
12: खास तौर से बच्चों को।
13: बिल्कुल
12: और अगर हो सके तो सूती दुपट्टा अंगोछा टोपी या फिर काले चश्मे इन सब चीजों का उपयोग करें। अरे अंजना हमने इतनी सारी बातें कर ली अपनी सखियों से तो क्यों ना आज हम अपनी सखियों को डॉक्टर प्रशांत सिंह और आकांक्षा सिंह की ये बातचीत सुनवा दें जिसका विषय ही है लू से बच्चों को कैसे बचाएं।
14: आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत सिंह। उन्हीं से जानेंगे कि अपने नन्हे मुन्नों को लू से किस तरह बचाया जा सकता है। सर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
15: धन्यवाद आकांक्षा जी।
14: लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है
15: जी।
14: तो सबसे पहले आप ये बताइए कि लू लगने के जो लक्षण है वो क्या है?
15: जी देखिए गर्मी काफी बढ़ चुकी है तापमान आप देखेंगे तो अनुमान हर जगह उत्तर प्रदेश या जितने भी प्लेन इलाके हैं
14: जी
15: 40 डिग्री या उससे ऊपर ही चल रहा है। तो गर्म मौसम अपने आप में लू का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर व्यक्ति समय से तरल पदार्थ न ले पानी कम पिए तो ऐसे व्यक्तियों को चाहे वह बूढ़ा हो जवान हो या बच्चा लू लगने की संभावना

0: काफी हद तक बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, बीच बीच में हम शब्द सुनते हैं हीट स्ट्रोक, तो क्या लू लगना और हीट स्ट्रोक, इसमें कुछ अंतर है या दोनों समान है?
0: एक तरह से देखा जाए तो दोनों की प्रक्रिया एक है, एक छोटा चरण है और एक बड़ा चरण है। लू लगना, बुखार आने लगता है
1: जी,
0: व्यक्ति को, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी होने लगती है, प्यास बहुत लगता है, और हीट स्ट्रोक उसका और विकराल रूप हो जाता है। उसमें व्यक्ति को सडन टेम्परेचर चेंज के कारण जो तापमान अधिक हो जाता है
1: जी,
0: तो बहुत तेज फीवर बुखार आता है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है और चक्कर भी आ सकता है और यहाँ तक कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो हीट स्ट्रोक खतरनाक होता है
1: जी।
0: लू उसका शुरुआती रूप है।
1: अच्छा, तो बच्चों और बड़ों में लू लगने के जो लक्षण हैं वो क्या समान होते हैं?
0: लगभग लगभग समान है। बच्चे में चूंकि उनका वजन कम है, उनके शरीर में पानी की मात्रा कम है
1: जी,
0: तो उनमें लक्षण हमें त्वरित दिखाई पड़ जाते हैं। बड़ों में चूंकि उनका वजन अच्छा है, पानी की मात्रा अच्छा है, तो कुछ समय बाद हमें सामने प्रतीत होते हैं
1: जी।
0: बट लक्षण दोनों में लगभग लगभग सेम रहेगा, जैसे बहुत अधिक प्यास की तास लगना और जी मचलाना
1: जी,
0: और बेचैनी बढ़ जाना। फीवर शुरू में तो कम रहेगा लेकिन सडन बहुत तेज फीवर बढ़ सकता है, 104 105 डिग्री तक भी बढ़ सकता है। साथ ही बच्चों में ध्यान देंगे तो इस मौसम में उल्टियां और पतले दस्त भी काफी बढ़ जाते हैं।
1: सर बताएं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें और बच्चों में, जैसे इन दिनों लू का प्रकोप ज्यादा है, तो उन्हें बचाने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाए, और अगर लू लग ही गई है तब क्या ध्यान रखना है?
0: ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। गर्भवती महिलाएं और बच्चे ये हाई रिस्क ग्रुप है हमारे पॉपुलेशन का
1: जी,
0: है ना? तो हमें इनको ध्यान यह देना है कि तेज धूप जो कि लगभग 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काफी रहता है, 5 बजे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 बजे तक तो धूप तेज रहती है लेकिन गर्म हवा आप देखेंगे लगभग 5 बजे तक काफी तेज रहती है
1: जी।
0: तो हमें इस समय अंतराल में गर्भवती माताएं और बच्चों को बाहर निकालने से बचाना है
1: जी।
0: और अगर मजबूरी में निकलना भी पड़ता है तो हमें ध्यान यह देना है कि वह सही तरीके से अपना हाइड्रेशन मेंटेन कर लें, या तो पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, नारियल पानी पी लें, गुड़ खा के पानी पी लें
1: जी।
0: तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेके घर से बाहर निकलें और एक बॉटल लेके चलें और साथ में या तो छाता का प्रयोग करें या गमछा या सूती तौलिया टॉवेल का भी प्रयोग करके ताकि डायरेक्ट धूप से भी बचा जा सके। खाने के लिए ध्यान दें तो तरल पदार्थ की तरफ हम लोग ज्यादा रहेंगे कि तरल पदार्थ अधिक से अधिक सेवन में लिया जाए। तरल पदार्थ का सिर्फ यह मतलब नहीं कि सिर्फ पानी ही पीना है, पानी इम्पोर्टेंट है बट साथ में हम जूस भी ले सकते हैं, नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं, पन्ना इस वक्त आसानी से उपलब्ध है उसका भरपूर प्रयोग करें, बाकी पानी आप हमेशा अपने पास कैरी करके जरूर रखें। गन्ने का रस भी आसानी से इस वक्त मिल जाता है तो वो पी सकते हैं, बुराई नहीं है बट गन्ने से हमारे शरीर में पानी का लेवल उतना नहीं अच्छा बढ़ेगा, प्लस हमें गन्ने के रस से सोडियम पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल पाते हैं
1: जी।
0: तो प्रयोग कर सकते हैं बट उस पर निर्भर नहीं रह सकते
1: जी। तो लेकिन समय समय पर जो ORS है
0: बिल्कुल
1: उसके साथ घर पे बनी शिकंजी हो गई या चीनी नमक
0: बहुत अच्छा
1: का जो घोल है
0: बिल्कुल
1: उसका इस्तेमाल किया जा सकता है
0: 100% कर सकते हैं। और मेन इस चीनी नमक घोल आपने बोला, शिकंजी बोला, ये पन्ना हो गया, इसमें क्या है पानी तो हमें मिल रहा है साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो भी मिल रहा है तो हमारा बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करने में उसके अगेंस्ट अपने आप को बचाव करने में ज्यादा अच्छे तरीके से कारगर हो जाता है। और एक बात का ध्यान हमें और रखना चाहिए कि चाहे थोड़ी हड़बड़ी जरूर जीवन में हो जाती है बट हल्का कुछ खा के ही निकलें और हाँ ये बात है हाइड्रेशन का हमेशा ख्याल रखें।
1: डॉक्टर साहब, बच्चों जैसे ही बुजुर्गों का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है, तो बताएं कि बच्चों और बुजुर्गों को लू लगने की संभावना क्या ज्यादा रहती है?
0: बिल्कुल,
1: क्यों?
0: देखिए बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही पॉपुलेशन के नाजुक अंश हैं
1: जी।
0: इन्हें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। बच्चे और बुजुर्ग दोनों में ही आप ध्यान देंगे तो शरीर में टोटल पानी की मात्रा कम रहती है एडल्ट्स की अपेक्षा, है ना। जो भी

0: टेम्परेचर का प्रभाव होगा, उसके कारण अगर बच्चे को वोमिटिंग होने लगती है या बहुत पसीना हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गई, तो बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी
1: जी।
0: तो इसलिए हमें उन्हें एक्स्ट्रा सेफ रखना चाहिए।
1: तो लू से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं हमें वो बताइए।
0: हाँ, लू से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, इस मौसम में अपने आप को, बार बार मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि हाइड्रेट अपने को अच्छे से रखें
1: जी,
0: और पानी का प्रयोग निरंतर अंतराल पे अवश्य करें। अगर आपको वोमिटिंग या पेशाब में जलन है तो पानी उसी हिसाब से बढ़ा दें, और तरल पदार्थ में आप जो भी, आपने भी बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए, जैसे सिकंजी हो गया और नींबू चीनी पानी, नमक का घोल हो गया, पन्ना हो गया, है ना, ये सब लिक्विड चीजें। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, दूध और दही के विषय में इस मौसम में अगर बात कर लें तो दही थोड़ा सा बेटर पड़ जाएगा। अगर जिस व्यक्ति को दही पसंद है या जो बच्चे और वृद्ध व्यक्ति को दही पसंद है तो हमें दही पे ज्यादा जोर देना चाहिए दूध की अपेक्षा। दही का बस इतना सा ख्याल रखना है कि बहुत फ्रिज से निकला हुआ तुरंत ठंडा सेवन ना करें, थोड़ा सा खराश आने का खतरा रहता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दही बहुत ही लाभदायक और उससे कोई दिक्कत नहीं आती है
1: जी।
0: एक बात मैं और बोलना चाहूंगा आकांक्षा जी, अपने श्रोतागणों के लिए, हमारा शरीर काफी अच्छा चीजों को एडजस्ट करता है, बट तापमान में सडन चेंज होता है तो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए एसी का तापमान जो हम लोग रिकमेंड करते हैं जनरली कि आप 28 या 29 पे रखिए, अचानक एसी से तुरंत बाहर धूप में ना निकलें, थोड़ा रेस्ट लेके नॉर्मल रूम में फिर आप बाहर निकलें, या आप तेज धूप से आए हैं तो सडन एकदम चिल्ड रूम में ना प्रवेश करें
1: जी, एसी या कूलर के सामने तुरंत ना जाएं।
0: तुरंत ना जाएं। कूलर में भी एक चीज है, अक्सर लोग बिना पानी के कूलर चला देते हैं तो और भी घातक हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक गर्म हवा सिर्फ अंदर फेंक रहा है। तो अगर कूलर का प्रयोग करना है तो आपको उसमें पानी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के केस में थोड़ा सा हम ये सावधानी रखेंगे कि कूलर की हवा बच्चे के सर पे डायरेक्ट ना जाए।
1: हीट वेव से नवजात शिशुओं को कितना खतरा है?
0: जैसा मैंने आपको बताया, हमारे वृद्ध जन, बच्चे और खासकर नवजात में तो पानी की मात्रा और भी कम रहेगी, ठीक है, तो लू लगने की, अगर वो धूप में निकलते हैं किसी भी कारणवश, तो उस नवजात बच्चे को लू की संभावना सबसे अधिक होगी। तो अच्छी बात तो यही है कि नवजात बच्चे को हम धूप में
1: ना निकाला
0: जाए, है ना। दूसरा है, नवजात बच्चा सिर्फ माँ का दूध का सेवन करता है तो इम्पोर्टेंट हम लोग जो बोलते हैं कि माताएं जो हैं हमारी, वो पानी का सेवन लगभग 3 से 4 लीटर अवश्य करें, क्योंकि गर्मी में देखेंगे जो व्यक्ति पानी कम पीता है वो उसका पेशाब भी कम हो जाता है। तो हमें अपने शरीर में पानी की मात्रा अच्छी रखनी है ताकि माँ के दूध में पानी की उचित मात्रा नवजात बच्चे को मिल सके।
1: माताएं जो स्तनपान करा रही हैं, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना।
0: हाँ, जो माताएं स्तनपान करा रही हैं, नवजात बच्चों में हमें बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, उनका अगर हम ध्यान दें तो उन लक्षणों को अगर हम घर में वॉचफुली देख लें तो बच्चा हमारा सीरियस होने से काफी हद तक बच सकता है। तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान देना है, बच्चा माँ का दूध अपना अच्छे से पी रहा है, अच्छे से पीने का अर्थ यह है कि बच्चा दूध पी के शांत है, चिड़चिड़ापन नहीं है बच्चे में, सुस्त नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण हम इस चीज को मापक जो है पेशाब की मात्रा से हम लोग करते हैं नवजात शिशुओं में, और वो लगभग अंदाजन जो गाइडलाइंस हैं कि अगर बच्चा हमारा 6 बार से अधिक पेशाब कर ले जा रहा है भरपूर मात्रा में तो समझिए उसको डिहाइड्रेशन लगभग नहीं होगा, बच्चा हमारा स्वस्थ है और हमें उसी जो बेसिक चीजें हैं उसका पालन आगे करते जाना है। देखिए, अगर उसको दस्त हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है तो हमारा बच्चा अगर सुस्त पड़ता है या पेशाब की मात्रा कम होता है या मदर बताती है कि वह दूध कम खींच रहा है या पी कम रहा है, ऐसे सभी कंडीशंस में हमें अपने नजदीकी बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए।
1: जी, प्रथम उपचार है वो क्या किया जाए?
0: देखिए, ये काफी अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जो बच्चे लू की चपेट में आते हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि उनको दस्त या वोमिटिंग हो सकती है, बट जरूरी नहीं कि सारे ही बच्चों को दस्त या वोमिटिंग हो, कुछ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बुखार आएगा, है ना, ना तो उनको खांसी, जुकाम या पतला दस्त या उल्टी की शिकायत रहेगी, ठीक है, सिर्फ बुखार है और तेज बुखार आ रहा है, तो हमें सबसे पहले प्राथमिक उपचार

0: शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर है उसके पास जाने में आपको समय लग सकता है। तो प्राथमिक उपचार में क्या है, सबसे पहले हम पूरा घर में बच्चे को पानी देने की कोशिश करेंगे, अगर वह पी लेता है तो वेल एंड गुड। और दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे शरीर को आप पानी से पोछेंगे हवा के प्रेजेंस में, मतलब पंखा चला के, ठीक है। आप नहला भी सकते हैं,
1: सामान्य तापमान पर पानी,
0: सामान्य
1: नॉर्मल टेम्परेचर वाटर,
0: ठंडे पानी से नहीं पोछना है, ठीक है। और बच्चे को आप नहला भी सकते हैं। दूसरा ये है, जैसे आपने बताया कि कई बच्चों को इस लू के चपेट से दस्त लगातार हो जाता है या उल्टियां लगातार होती हैं, तो ये अधिकतर बच्चों में इस मौसम में कॉमन है। तो इसमें हमें ORS का प्रयोग भरपूर करना चाहिए, पानी का भी भरपूर प्रयोग करना चाहिए, तरल पदार्थ मैक्सिमम दें ताकि पेशाब शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो जाए बच्चे को। और बाकी बुखार के लिए हम पैरासिटामोल दवाएं अक्सर घरों में रहती हैं, उसको सही मात्रा में, डोज की इम्पोर्टेंट है,
1: डॉक्टर की परामर्श के अनुसार,
0: हाँ, उसके अनुसार आप डोज दीजिए। और साथ में आप स्पॉन्जिंग भी करें तो उसका लाभ ज्यादा मिलेगा।
1: तो अगर लू लगने की समस्या पर ध्यान न दिया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है।
0: बिल्कुल, अगर लगातार दस्त या उल्टी हो रहा है, साथ में तेज बुखार है, तो इन प्राथमिक उपचार के साथ साथ हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहिए
1: जी।
0: अगर जरूरत पड़ती है तो अगर एडमिशन करने की, ताकि फ्लूइड्स चल सके, ताकि बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन हो सके, क्योंकि बच्चा उस वक्त हो सकता है अपने सचेत अवस्था में ना हो
1: जी,
0: है ना, तो उसमें हमें फ्लूइड्स लगाने पड़ते हैं। तो जैसे ही परामर्श है उसके अनुसार काम करना चाहिए
1: जी। तो लू लगने पर बच्चों के लिए खान पान में क्या सावधानी बरतनी जरूरी है?
0: हाँ, बहुत तैलीय चीजें ना रहें
1: जी,
0: और सुपाच्य चीजें बेस्ट रहती हैं, और तरल पदार्थ की हम लोग कई बार बात कर चुके, उसका सेवन करना है। दूध से अच्छा दही रहेगा या लस्सी रहेगा, है ना, और इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और माता पिता को थोड़ा सा बच्चों के पानी पीने के फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा कि उनसे पानी के बारे में बार बार पूछते रहें।
1: और आपने सुपाच्य भोजन की बात की, तो पतला दलिया हो गया, मूंग की पतली खिचड़ी हो गई,
0: हाँ,
1: दही चावल हो गए, मीठा करके उसे बच्चों को खिला दिया, तो इन सब चीजों का सेवन किया जा सकता है।
0: बिल्कुल किया जा
1: जी
0: सकता है।
1: चलते चलते ये आखिरी प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि टेम्परेचर नापने के लिए जब बुखार चढ़ता है तो कई घरों में जो थर्मामीटर है उसका उपयोग आज भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हर घर में एक प्राथमिक उपचार का जो किट रहता है उसमें थर्मामीटर रखना जरूरी है, लेकिन ये थर्मामीटर किस तरह का होना चाहिए उस बारे में थोड़ा बता दें।
0: मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग ना करें, डिजिटल थर्मामीटर ज्यादा अच्छा रहता है, सुरक्षित रहता है।
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि मरकरी थर्मामीटर में एक सबसे बड़ा खतरा रहता है, बाई चांस बच्चे के मुंह में अगर मरकरी बल्ब टूट जाती है तो जहर का काम करती है। और वैसे तो हम लोग एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं, बट एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं, तो डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करना।
1: सर, आप आए, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप डॉक्टर प्रशांत सिंह और आकांक्षा सिंह की ये बातचीत सुन रही थी जिसका विषय था लू से बच्चों को कैसे बचाएं। और सखियों, इसके साथ ही आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। आज ये दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है।
3: बिल्कुल। और सखियों, देखिए गर्मी भी बहुत हो रही है, और ऐसे में अगर खीरे और चुकंदर का अगर हम सेवन करें तो काफ़ी अच्छा है ना। तो खीरे का अगर पेय बनाना है आपको तो उसके लिए सामग्री है 2 खीरे कटे हुए, 1 नींबू का रस, 8-10 पुदीने की पत्तियां, 2 चम्मच चीनी या शहद, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और 1 कप पानी, बर्फ के कुछ टुकड़े।
2: बिल्कुल, इसको बनाने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर में या फिर ब्लेंडर में कटा हुआ खीरा और पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा पानी डालकर इसे एकदम बारीक पीस लीजिए, और इस मिश्रण को आप छान भी सकती हैं। अगर आपको पल्प पसंद है तो बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर खीरे के रस में आप नींबू के रस, काला नमक, भुना जीरा और चीनी या फिर शहद अच्छी तरह मिलाकर इसे आप कांच के ग्लास में कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर पुदीने के पत्ते और खीरे के स्लाइस में सजाकर ठंडा ठंडा सर्व कर सकती
3: हैं। बिल्कुल सखियों, और इसी तरह से आप चुकंदर के शिकंजी भी बना सकती हैं, लेकिन अब तो घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं। लेकिन चलते चलते हम आपको ये बता दें कि आप अपने घर को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित रखिए, क्योंकि वो आपका एक छोटा सा आशियाना है जो बहुत ही खूबसूरत और शांत शानदार होना चाहिए, है ना सखियो। और हम आपसे आगे भी मिलेंगे, आगे भी बात करेंगे, और अपनी रेडियो दोस्त सुखदा
2: और अंजना को
3: दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं मंगला विश्वकर्मा। इनके स्वर में लीजिए सुनिए सबसे पहले विदेशिया गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज की कलाकार हैं मंगला विश्वकर्मा। इनके स्वर में लीजिए सुनिए अब लाचारी गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार थी मंगला विश्वकर्मा। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2000

0: 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने

0: केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, प्रस्तुति प्रियदर्शी गौतम की।

कुछ बातें कुछ गीत सुनने वालों को आपकी रेडियो दोस्त प्रियदर्शी का नमस्कार आदाब। तेरे आने की क्या उम्मीद, मगर कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। श्रोताओं, जिंदगी कभी धूप सी खिली हुई तो कभी बादलों में उलझी हुई होती है। कभी किसी अपने की हंसी में सुकून मिलता है तो कभी अकेलापन की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन शायद यही उतार चढ़ाव हमें जीना सिखाते हैं, क्योंकि सीधी रेखा तो सिर्फ मशीनों की होती है, दिलों की धड़कनों में तो हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। तो आइए आज कुछ बातें करते हैं जिंदगी की, उन रास्तों की जहाँ कभी उम्मीद मिलती है तो कभी सब्र का इम्तिहान होता है, और इन एहसासों का साथ देंगे कुछ खूबसूरत गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: दोस्तों, हम अक्सर लोगों को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान होगी, लेकिन सच तो ये है कि हर मुस्कुराहट के पीछे किसी संघर्ष की कहानी छुपी होती है। किसी ने अपने सपनों को टूटते हुए देखा होता है तो किसी ने अपनों को दूर जाते हुए देखा होता है, और कोई हर दिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है।

श्रोताओं, जिंदगी हमें गिराती भी है लेकिन हर बार उठना भी सिखाती है। कहते हैं ना, समय जब कठिन हो तब मजबूत बनना पड़ता है और जब समय अच्छा हो तब विनम्र बनना पड़ता है। श्रोताओं, कभी सोचा है आपने, जो लोग कभी हमारी दुनिया हुआ करते थे, वक्त के साथ वही लोग यादों का हिस्सा बन जाते हैं। जिंदगी हर दिन बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं और कभी कभी तो हम खुद भी बदल जाते हैं। लेकिन हर बदलाव कुछ सिखा जाता है। अगर बिछड़ना ना होता तो शायद मिलने की अहमियत भी समझ नहीं आती। अगर संघर्ष ना होता तो जीत इतनी खूबसूरत नहीं लगती।

श्रोताओं, भागती हुई इस दुनिया में हम सब दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी खुद से पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूँ? कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन सफर दूसरों तक पहुँचना नहीं, बल्कि खुद को समझना होता है। थोड़ा रुकिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, वो हर हाल में जीना सीख जाता है। दोस्तों, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। जिंदगी में मुश्किलें स्थायी नहीं होती। आज अगर आंसू हैं, तो कल मुस्कान भी होगी। बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि कई बार हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय सब्र के बाद ही शुरू होता है। तो श्रोताओं, जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, कभी खुशी, कभी गम, कभी जीत, कभी इंतजार, लेकिन हर अनुभव हमें थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और मजबूत बना जाता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपसे फिलहाल विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी दिन किन्हीं और बातों और गीतों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, आदाब।

यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। दोपहर के 3 बज रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेब्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आरंभ होती हमारी सांध्यकालीन सभा शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:07 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म साथी से, आवाज कुमार शानू की, शब्द रचना है समीर की और संगीत से सजाया है नदीम स्टॉन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म दीवाना से, आवाज कुमार सानू की, संगीतकार निर्मिश्रण और गीत से सजाया है समीर ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म माँ से, आवाज कुमार शानू की, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 और 7 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में ना पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह की जल्दी, काम की टेंशन, पढ़ाई का दबाव, और फिर अचानक एहसास होता है कि अरे, अपने लिए तो थोड़ा सा वक्त बचा ही नहीं पाए।
1: तो बस आपकी इसी भागती दौड़ती शाम को थोड़ा हल्का, थोड़ा खुशनुमा और थोड़ा यादगार बनाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं, बातों की गर्माहट और ढेर सारी जानकारियाँ लेकर।
0: जी हाँ दोस्तों, अगले कुछ पलों में कभी बातें होंगी सपनों की, कभी किस्से होंगे इतिहास के, तो कहीं मिलेगा मोटिवेशन का भरपूर डोज।
1: यानी ये शाम होने वाली है थोड़ी एंटरटेनिंग, थोड़ी इमोशनल और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ।
0: लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मुलाकात तो कर लीजिए आज की इस खूबसूरत महफिल के अपने साथियों से। तो दोस्तों, आज के सफर में आपके साथ हूँ मैं मोनिशा।
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त सना। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आगाज करते हैं इस सफर का एक प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि संगीत वो जादू है जो थके हुए दिन को भी खूबसूरत बना देता है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 बजे और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग, कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो श्रोताओं, हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके सपने और उनका भरोसा देश की दीवारों पर हमेशा के लिए लिख जाते हैं।
5: आज 27 मई है, वो दिन जब भारत ने अपना पहला प्रधानमंत्री खोया था। लेकिन
4: सच कहें तो भारत ने सिर्फ एक नेता नहीं, एक सपना देखने वाला इंसान खोया था।
5: कहते हैं नेता भाषण देते हैं, लेकिन नेहरू जी चिट्ठियाँ लिखते थे।
4: वे जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपनी बेटी इंदिरा को दुनिया समझाते थे, इतिहास सुनाते थे।

0: सभ्यता बताते थे और शायद उन्हीं चिट्ठियों में वो भारत भी लिख रहे थे जिसका सपना उन्होंने देखा था।
1: एक ऐसा भारत जहां बच्चे डरकर नहीं सपने देखकर बड़े हों, जहां विज्ञान मंदिर हो और किताबें सबसे बड़ी ताकत,
0: जहां अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां लड़े नहीं एक साथ मुस्कुराए।
1: लेकिन सोचिए, आज अगर नेहरू जी हमारे बीच होते तो क्या देखते?
0: मोबाइल में झुकी हुई दुनिया, जल्दी में ही भागते लोग और शायद थोड़ा कम होता हुआ संवाद।
1: शायद वो फिर कोई चिट्ठी लिखते हम युवाओं के नाम,
0: जिसमें लिखा होता भारत सिर्फ नक्शे पर बनी सीमाओं का नाम नहीं, भारत उन लोगों का नाम है जो एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं।
1: दोस्तों, नेहरू जी सिर्फ चाचा नेहरू कह देने आसान नहीं था उनको, लेकिन उनके सपनों का भारत बनाना वो असली श्रद्धांजलि है।
0: जब कोई बच्चा पढ़ पाता है, जब कोई लड़की अपने सपनों के लिए आगे बढ़ती है, जब कोई युवा सवाल पूछता है और जब हम नफरत से ऊपर उठकर इंसानी चुनते हैं, तभी कहीं ना कहीं नेहरू जी मुस्कुराते होंगे।
1: आज उनकी पुण्यतिथि पर सिर्फ उन्हें याद मत कीजिए, थोड़ा उनके सपनों को भी याद कीजिए, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो देश की सोच बन जाते हैं।
0: और ऐसे शख्सियत को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, कभी कभी इतिहास में ऐसे लोग आते हैं जो तलवार लेकर नहीं सवाल लेकर खड़े होते हैं और लड़ते हैं, और उनके सवाल समाज की सबसे पुरानी दीवारों को हिला देता है। और आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे ही महान समाज सुधारक और तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन के जनक कंदुकूरी वीरेशलिंगम पंतुल को, एक ऐसा नाम जिसने उस दौर में आवाज़ उठाई।
1: और जब औरतों की आवाज़ सुनना भी समाज को मंजूर नहीं था, सोचिए वो समय जब विधवा होना जिंदगी खत्म हो जाना जैसा माना जाता था।
0: सफेद कपड़े, तानी, अकेलापन और समाज के बनाए ऐसे नियम जो किसी इंसान को जीते जी ही कैद कर देते थे। लेकिन उसी समय आंध्र प्रदेश की धरती से एक आवाज उठी, क्यों एक औरत को सिर्फ इसलिए जीने का अधिकार नहीं क्योंकि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है?
1: वीरेश लिंगम पंतुलू जी ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने लड़ाई लड़ी, लोगों के विरुद्ध झेले, गालियां सुनी, धमकियां तक मिली।
0: लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, समाज को आईना दिखाने के लिए किताबें भी लिखी।
1: इसीलिए उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोगों की सोच नहीं बदली, पूरे समाज को नई दिशा दी।
0: दोस्तों, आज हम जिस बराबरी की बात करते हैं, उस रास्ते पर कहीं ना कहीं वीरेशलिंगम जैसे लोगों के संघर्ष के निशान हैं।
1: उन्होंने हमें सिखाया सच्चा धर्म इंसानियत है, और सबसे बड़ी पूजा किसी की जिंदगी को बेहतर बनाना है।
0: आज उनकी पुण्यतिथि पर सिर्फ उन्हें याद मत कीजिए, ये भी सोचिए अगर आपके आसपास कोई लड़की अपने सपनों के लिए लड़ रही है, कोई औरत समाज की बंदिशों से जूझ रही है, तो क्या हम उसके साथ खड़े हैं?
1: क्योंकि बदलाव किताबों में नहीं आता, बदलाव इंसानों के व्यवहार से आता है।
0: नमन उस महान समाज सुधारक को जिसने अपने समय से बहुत आगे जाकर सोचा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 बजे और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:30 बजे।

मिनट पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग, कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो श्रोताओं, हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दोस्तों, हर बुधवार युवाणी में हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट मार्गदर्शन, जहां हम बात करते हैं करियर और उन तमाम विषयों की जो हर युवा के लिए बेहद जरूरी है और जो युवाओं को नई सोच, सही दिशा और बेहतर मार्गदर्शन देने का काम करते हैं।
2: इस सेगमेंट में हम आमंत्रित करते हैं ऐसे विशेषज्ञों को जो अपने अनुभव और जानकारी के जरिए आपके सवालों को आसान भाषा में समझा सके।
1: और आज भी हम एक खास विषय और विशेष अतिथि के साथ हाजिर हैं। आज के मार्गदर्शन का विषय है न्यूज़ राइटिंग और रिपोर्टिंग की कला,
2: और इसी विषय पर हमारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेश चौरसिया जी। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं ये मार्गदर्शन।
3: दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युवाणी के इस खास सेगमेंट मार्गदर्शन में। आपके साथ मैं हूँ मोनिशा। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे विषय जो आपके करियर, आपकी सोच और आपके भविष्य को नई दिशा देने का काम करते हैं। और दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो भी इसी पर आधारित है। हमारा आज का विषय है टेलीविजन के लिए न्यूज राइटिंग और रिपोर्टिंग की कला। दोस्तों, आज का दौर टेलीविजन और डिजिटल मीडिया का दौर है। हर दिन टीवी स्क्रीन पर जो खबरें हम देखते हैं, जो रिपोर्टर हमें देश दुनिया की जानकारी देते हैं, जो एंकर अपनी आवाज और शब्दों से खबरों को हमारे सामने जीवंत बना देते हैं, उसके पीछे होती है न्यूज राइटिंग और रिपोर्टिंग की एक खास कला। लेकिन आखिर एक अच्छा टीवी रिपोर्टर कैसे बनता है, कैसे लिखी जाती है टीवी की भाषा, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस कैसे आता है और आज के युवाओं के लिए मीडिया की दुनिया में क्या संभावनाएं हैं, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मीडिया क्षेत्र के शैलेश चौरसिया जी, जो लंबे समय से टेलीविजन, जर्नलिज्म, न्यूज राइटिंग और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपको विभिन्न न्यूज चैनलों में ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर टेलीविजन रिपोर्टिंग की बारीकियों का अनुभव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट में।
4: धन्यवाद मुनिषा जी।
3: तो मेरा जो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टेलीविजन जर्नलिज्म आखिर होता क्या है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है।
4: मनीषा, आज युवाओं के बीच में बड़ा क्रेज है इस टेलीविजन का, और इस विषय का आप लोगों ने चयन किया, इसके लिए पूरी की पूरी टीम को मैं साधुवाद और बधाई देता हूं, क्योंकि बेहतर मार्गदर्शन ही सब कुछ युवाओं को एक दिशा दे पाता है। और खास तौर से युवा हमारे जो हैं, उनकी काउंसलिंग अच्छी न हो तो वो लगता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और कुछ जो अपूर्ण ज्ञान के ज्ञानी समाज में घूम रहे हैं वो लोग भी इन चीजों से थोड़ा सा वो करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है उसमें, तो किसी भी यूथ को अगर कोई व्यक्ति पत्रकारिता करना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक किसी अच्छे संस्थान से पत्रकारिता के कोर्स करने चाहिए, ताकि वहां पे जो लोग भी हैं, अध्यापक, प्रोफेसर, रीडर या जो एक्सपर्ट वहां आ रहे हैं, वो आपको उन बारीकियों को बताएंगे कि समाज में किसी भी खबर को दर्शकों तक पहुंचाने से पहले कैसे

0: से आपको क्या करना चाहिए। बहुत बारीक चीजें होती हैं, शब्दों का चयन, लिखने की शैली, और खासतौर से जब प्रिंट मीडिया के बाद विजुअल मीडिया का पदार्पण हुआ, टेलीविजन का पदार्पण हुआ, तो वैसी परिस्थितियों में ज्यादा प्रभावी कौन हुआ? टेलीविजन मीडिया हुई। टेलीविजन मीडिया के आने के बाद चूंकि ये दृश्य है और एक्शन विजुअल आपको दिख रहा है, किस व्यक्ति ने क्या बयान दिया ये आपको सुनने को मिल रहा है, घर बैठे पूरी दुनिया की खबरें आपको मिल रही हैं, तो इन परिस्थितियों में वो बहुत प्रभावी हुआ बनस्पत न्यूज़पेपर के। समाचार पत्रों में आपको एक फोटो मिल जाती है, ज्यादा बड़ी खबर है दो फोटो मिल गई, और लिखने में जो भी शैली लिखी जा रही है अखबार में वो सारी सूचनाएं आपको मिल गई। लेकिन विजुअल मीडिया ने इतना प्रभाव छोड़ा समाज के ऊपर कि लगातार जो दृश्य दिख रहा था उस दृश्य के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो इस वजह से टेलीविजन बहुत प्रभावी हुआ। और किसी भी युवा को अगर टेलीविजन में अपना कैरियर बनाना है, उन्हें लग रहा है कि इन चीजों पे काम करना चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले कहीं से पत्रकारिता के कोर्स कर लें वो, फिर उसके बाद उनको जो पत्रकारिता की काम करने की शैली है उन जानकारियों को हासिल करना चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि अगर आप किसी अन्य प्रदेश में किसी अन्य ऐसी भाषा प्रमुख या जो क्षेत्रीय भाषा की चीजें हैं वहां आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको हिंदी इंग्लिश जरूर आना चाहिए और शुद्ध आना चाहिए। हिंदी तो बहुत लोग लिखते हैं लेकिन उसमें बहुत सी त्रुटियां होती हैं, व्याकरण की त्रुटियां होती हैं, तो लेकिन मीडिया में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहां अगर त्रुटि होगी तो दर्शकों पे एक गलत प्रभाव पड़ता है, तो मनीषा इन सब चीजों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।
1: सर आपने कहा कि भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, लेकिन जो हमारे ऑडियंस है टीवी वाले वो नॉर्मली गांव से आते हैं और उतने हाईली एजुकेटेड नहीं होते, तो उनमें क्या हम एकदम व्याकरण वाली भाषा का इस्तेमाल करें कि आम बोलचाल की भाषा का ही इस्तेमाल ज्यादा बेहतर रहेगा?
0: बेहद अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि दर्शक का क्लास आप बांट नहीं सकते। कभी ये नहीं है कि इस समय में टेलीविजन इस वर्ग के लिए समाचार दिखा रहा है, समाचार सामान्यतः चल रहा है, बस अगर शाम को प्राइम टाइम को छोड़ दें जहां पूरे दिन की महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, लेकिन खबरें सभी तरह की होती हैं, कुछ अलग अलग कार्यक्रम जरूर बनाए जाते हैं विशेष दर्शकों के लिए, लेकिन सामान्यतः खबरें एक होती हैं, तो ऐसे में किसी भी रिपोर्टर को अपने शब्द और भाषा वाक्य इन सब चीजों पे संयम रखते हुए और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर मनीषा कहें कि रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर आपका हेड ऑफिस दिल्ली है, मुंबई है, नोएडा है, एक्स वाई जेड कहीं पर भी है, लेकिन आपने कहीं दूर से 500-700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से आपने रिपोर्टिंग अपने दफ्तर को की है, तो ऐसे में आपने ऐसी भाषा लिख दी और कोई बड़ी खबर है, एंकर टेलीविजन के ऊपर है और आपने ऐसी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर दिया जो एंकर को कहीं न कहीं कुछ व्यवधान डाल रहा है, कुछ रुकावट पैदा कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये शब्द है क्या, तो रिपोर्टर को हमेशा ये बचना चाहिए कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करे कि जो एंकर से लेकर के और एंकर के बोले जाने के बाद दर्शकों तक पहुंचे हुए शब्द भी सामान्य हो। मनीषा बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: जी सर, हमारे जो यंगस्टर्स है, जो हमारे युवा है, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें कई बार ये होता है कि कैमरा के सामने आने में उन्हें डर लगता है, तो उन्हें आप क्या नसीहत देना चाहेंगे कि वो कैमरे को कैसे फेस करें और इस क्षेत्र में भविष्य कैसे बनाए?
0: युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है
1: जी।
0: हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे आपने स्कूल शुरू की, प्राइमरी स्कूल में रहे हैं, आपने कभी स्टेज नहीं किया, कभी आप माइक पे नहीं बोले, लेकिन बड़े होने के बाद आपको लगा कि ये फील्ड मुझे चुनना चाहिए, ऐसे में आप कभी भी झिझकिए नहीं, आप अपनी झिझक को तोड़िए। वो कैसे टूटेगा? वो तो आपके काम करने से ही टूटेगा, कभी वो उसको रोकिए नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं उन सभी नौजवानों के लिए कि जो लगता है उनको कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, आप कभी किसी के सामने मत जाइए, कभी ये कुंठा मत अपने अंदर ले आइए कि आप बोल रहे हैं तो शब्द गलत हो रहे हैं। एक कहीं किनारे होइए, अब तो आप हर हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और टेलीविजन में भी मोजो बहुत प्रभावी है, मोबाइल जर्नलिज्म पूरी तरह से हावी है। ऐसा नहीं है कि कैमरे लेकर के ही काम किए जा रहे हों, एक आपके पास माइक है, मोबाइल है, और एक हाथ में कोई छोटा ट्रिपॉड आपने ले लिया और उससे आप अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मेरी सुझाव उन सारे नौजवानों को है कि अगर आप काम करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आप किसी के सामने बोलने में घबराते हैं, आपको झिझक आ रही है, आपके पास शब्दकोश नहीं है, तो सबसे पहले अपने शब्दकोश को मजबूत करिए, फिर उसके बाद एक किनारे वीडियो बनाइए अपना, किसी भी विषय पे आप चुपचाप लगातार एक तारतम्य में 2 मिनट पहले बोलना शुरू करिए, फिर 2 मिनट का वो वीडियो बनाने के बाद आप उसको देखिए कि आपकी लिप्स कहाँ जा रही है, शब्दों का उच्चारण कहाँ है, कहीं त्रुटियां आप कर रहे हैं, स को श और श को स कर रहे हैं, तो ये इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें हैं, और 1-2 वीडियो बनाइए। मे बी जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि आपका वीडियो सही है, तो फिर उसके बाद उस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए।

0: उनको दिखा के उनकी ओपिनियन लीजिए। अगर वो कहते हैं कि ठीक है तो फिर थोड़ा सा उसका दायरा और बढ़ाइए, फिर रिलेटिव के बीच जाइए कि ये मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आप अपने मन में बैठे हुए उस कुंठा को तोड़िए कि आपसे नहीं हो पा रहा है, और धीरे धीरे करके आप ऐसे ऐसे जब अपना दायरा बढ़ा करके आपको लगेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो संतुष्ट है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, तो धीरे धीरे उसको फिर आगे बढ़ाइए, फिर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के काम करिए। और नौजवानों एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप काम करेंगे तो आपके विरोधी कुछ होंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज करने वाले होंगे। आपके काम को 100 में 50 लोग पसंद कर रहे हैं तो 50 उसमें ऐब निकालेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि वास्तव में वो जो त्रुटियां बता रहे हैं वो सही है, तो उन त्रुटियों को आप दूर कर लीजिए। और लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको डोमिनेट करने के लिए इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, तो आप उसको एकदम इग्नोर करिए और एक लक्ष्य करिए कि आपने क्या लक्ष्य साधा है और आपको कहां तक जाना है।
1: जी सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे होंगे इस बात को ध्यान में रखेंगे और अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो इसको जरूर फॉलोअप करेंगे। और सर, जैसे आपने कहा कि अगर हमें बेहतर बनना है तो उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, आज के समय में यूट्यूब आ गया है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, जर्नलिज्म स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे टीवी जर्नलिज्म है, वैसे अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या जो हमारा टीवी जर्नलिज्म है और सोशल मीडिया जर्नलिज्म है, क्या इन दोनों में कोई समानता है या फिर ये टीवी जर्नलिज्म को एक तरीके से खत्म कर या रिप्लेस कर रहा है?
0: मुनिषा जी, सवाल तो बड़ा अच्छा है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा
1: जी
0: कि आज के नौजवानों के लिए तो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पड़े हैं जिस पर वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, बस उनके अंदर झिझक खत्म होनी चाहिए और वो क्या करना चाहते हैं उसको। तमाम ऐसे बड़े रिपोर्टर हैं जिन अपना आइडियल मान सकते हैं, चीजों को पढ़ करके सीख सकते हैं। जब हम लोगों ने कैरियर शुरू किया तब तो सैटेलाइट चैनल नहीं था, अब उसके बाद धीरे धीरे जब सैटेलाइट चैनल आया तो उसके बाद एक खबरें मैं शूट करता था तो उस टेप को दिल्ली तक पहुंचाने में एक दिन का दो दिन का समय लग जाता था। तो इतनी पेचीदगियां थी अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, अपने काम को करने के लिए। लेकिन आज तो क्या है कि आप कुछ मत करिए, अपने नाम से यूट्यूब चैनल बना लीजिए, बना करके फिर अपनी चीजों को आप लगातार उस पर दिखाइए लोगों को, लोगों की ओपिनियन लीजिए। आज आप देखिए कि सारे बड़े रिपोर्टर जिन्होंने दो दशक तीन दशक तक काम किया आज वो किसी टेलीविजन चैनल में नहीं है और अपने ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया में इतने प्रभावी हैं कि लोगों को उस पर बड़ा विश्वास हो रहा है और उनके काफी सब्सक्राइबर हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। तो ऐसे में आप भी उन चीजों को कर सकते हैं। लेकिन नौजवानों एक चीज का ध्यान रखिए कि कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि ये चीज देखी जाए तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, कुछ ऐसे विजुअल दे करके आप कि पैनिक बना दें उन चीजों को, तो उससे हमेशा किसी भी रिपोर्टर को बचना चाहिए, ये बड़ी सावधानियां होनी चाहिए
1: जी। और सर, ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जो टीवी जर्नलिज्म है उसमें छात्र जाना तो चाहते हैं, वो एंकर को टीवी में देखते हैं तो बहुत इम्प्रेस होते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि सही रास्ता क्या है, उस फील्ड में कैसे आगे बढ़े, तो उस पर थोड़ा मार्गदर्शन हमें एक दीजिए।
0: मनीषा, जो किसी भी नौजवान के लिए या किसी भी नए ऐसे व्यक्ति के लिए जो बड़े टेलीविजन एंकर को टीवी पे देख करके उनको आइडियल मान करके और कैरियर उस ओर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी चीज के, किसी भी पैदान की पहली सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे तो वो पहली सीढ़ी है क्या, आपकी हिंदी, हिंदी भाषी हैं आप तो हिंदी आपका मजबूत होना चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, शब्दकोश आपके अच्छे होने चाहिए, लिखने की शैली और बोलने की शैली। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी चीजों को अच्छे ढंग से समाज के सामने रखिए। जैसा इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैं जो कह रहा हूं कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं, मुझे इस पर फोकस करना होगा। तो नौजवानों, सबसे पहले आप जो दो तीन बेसिक चीजें हैं उसको आप करिए। और बड़े टेलीविजन चैनल में जाते हैं तो बड़े टेलीविजन में जाने से पहले आपको छोटे चैनलों पे काम करके आपको अपनी चीजों को बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि आज आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके 10 20 50 100 वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं तो वो आपको अपने काम को किसी बताने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी आपका सीनियर जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको आप बताएंगे तो वो देख करके एनालिसिस कर सकता है, उसका आकलन कर लेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। लेकिन बेसिक जो चीजें हैं, आपको टाइपिंग, ट्रांसलेशन, फ्रेम का ज्ञान और कुछ वॉइस ओवर जो व्यू किया जाता है और शब्दों को कैसे लिखा जाता है, टेलीविजन में जो विजुअल है उसी को आपको खबरों में लिखना है। और आप बात कर रहे हैं लाठीचार्ज की और लाठीचार्ज आपके पास नहीं है
1: जी।
0: आप बात कर रहे हैं कि वहां दो विधायकों में झगड़ा हुआ और झगड़े की शॉर्ट्स नहीं है, तो इस तरह की छोटे छोटे उदाहरण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको हमेशा टेलीविजन में विजुअल

0: ध्यान है, तो ऐसे में वीडियो न हो तो उन खबरों पे उन शब्दों को समाचार में शामिल न करें।
1: सर, आपने टीवी से जुड़े कुछ शब्दों को यहाँ पे मेंशन किया, लाइक बाइट एंड साउंड बाइट। तो सर, थोड़ा मैं इसके और बारीकियों को जानना चाहूंगी कि इसमें और ऐसे क्या टर्म्स होते हैं जो छात्र इसमें जाना चाहते हैं, वो इसको पहले से जान करके जाए तो उनके लिए वहाँ पे सफर उनका आसान हो जाए।
0: मनीषा, टेलीविजन में आने से पहले, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि समाचार पत्र की रिपोर्टिंग हो या टेलीविजन की हो या सोशल मीडिया जो बहुत स्ट्रांग है उसकी हो, रिपोर्टिंग का पार्ट कह रहा हूँ, रील्स के पार्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ। रिपोर्टिंग के पार्ट्स में आपको 5W1H का प्रयोग करना है। 5W है क्या? तो 5W में, जैसा आप जानते हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, तो इन चीजों को शामिल कर लें। किसी भी खबर को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, दर्शक जो बैठा आपके टेलीविजन को देख रहा है, आपके यूट्यूब चैनल को देख रहा है, तो उसे ये पता होना चाहिए ये खबर कहाँ की है, कहाँ की है तो वेयर इसमें इस्तेमाल हो रहा है, खबर में क्या है, व्हाट इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको आप, खासतौर से जो टेक्निकल शब्दों की बात आपने की, तो बाइट, बाइट क्या होता है? बाइट से अभिप्राय एक टुकड़ा होता है। एंकर शब्द है, मुंशा मैं आपसे बोलूं कि एंकर इस्तेमाल किया जाता है। एंकर की अगर हिंदी पे जाएंगे तो वो तो लंगर होता है
1: जी।
0: लेकिन ऐसे में ये टेलीविजन की भाषा है, ऐसे में कोई भी आदमी कहता है कि ये एंकर है, तो एंकर से अभिप्राय है कि किसी भी टेलीविजन उस मंच पे समाचारों के माध्यम से वो अपने दर्शकों को कहीं न कहीं अपनी प्रस्तुति से बांधे रखता है, वो एंकर के रूप में होता है, वो आपको समाचार बता रहा है। अगर कोई सोशल फंक्शन चल रहा है तो उसमें भी एंकरिंग होती है, वो एंकर का वहां रोल दूसरा हो जाता है। तो बाइट है, एंकर है, पीटूसी है, 1-to-1 है, टिकटैक है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे 1-to-1 है, मैं आपके साथ बैठा बात कर रहा हूं, नहीं, हमने आपसे इंटरव्यू लेना शुरू किया, तो मैं आपके साथ 1-to-1 कर रहा हूं
1: जी।
0: उसमें और कोई तीसरा नहीं है, तो हमेशा कह दिया कि वॉक्स पॉप एक शब्द है। टेलीविजन से आपके कह दिया गया ऑफिस से कि आप, तेल का संकट चल रहा है इस समय, तो इसमें किस तरह से लोग इसको ले रहे हैं, इस पर आप 10 लोगों के व्हाट्सअप कर दिए, तो उसमें रिपोर्टर बाहर होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस शहर से आपको कहा जा रहा है, जिस वर्ग का कहा जा रहा है, अगर व्यापारी वर्ग से बात करनी है या किसी प्रोफेसर से बात करनी है, कोई चिकित्सा का विषय है, डॉक्टर से बात करनी है, उनके व्हाट्सअप करनी है, तो वो इस तरह की जो छोटी छोटी शब्द हैं वो टेलीविजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब कोई भी रिपोर्टर काम करने लगता है तो उसको इन सब सारी चीजों की जानकारी हो जाती है और उस पर वो काम करने लगता है
1: जी। सर, और तो जानना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स हमारे हैं इस क्षेत्र के, उनके लिए इंटर्नशिप करना कितना इम्पोर्टेंट होगा और कहां से सही जगह से इंटर्नशिप करें कि उनको सीधे टेलीविजन में एक, कह सकते हैं कि मौका मिले वहां पर जाने का, सही मार्गदर्शन मिल सके उनको।
0: इंटर्नशिप एक ऐसा शब्द है कि जो किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो विद्यार्थी हैं उनको काम का कल्चर देखने का मौका मिलता है, काम कैसे होता है। आप, लॉकशीट एक शब्द है, तो लॉकशीट आप अपने घर में जान सकते हैं, लेकिन कहां पे किस तरह से उसको लॉक किया जाना है, खबरों को, बाइट को कैसे लॉक किया जाना है। अब बाइट को लॉक करने का शब्द अगर है, आपने किसी की बाइट ली, उस बाइट में 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट की बाइट आपने ले ली, लेकिन टेलीविजन पे 2 मिनट की पूरी पैकेज कटनी है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही चीजें आपको लॉक करनी है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो जानने का मौका आपको जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे या किसी बड़े दफ्तर में जाते हैं, तो वहां आपके पास प्रोड्यूसर होता है, एंकर होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, स्टूडियो का काम होता है, एडिटिंग टेबल होती है, PCR होता है, मतलब इस तरह की सारी चीजें, सब कुछ जानने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए किसी भी विद्यार्थी को इंटर्नशिप बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वहां जाने के बाद उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, और उस संपर्क के माध्यम से अगर वो टैलेंटेड है तो कई कई बार होता है जहां आपने इंटर्नशिप किया वहीं आपको काम करने का मौका मिल जाता है, नहीं तो कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और आपके सीनियर्स को लग रहा है कि हाँ ये स्टूडेंट मेघावी है, ये टैलेंटेड है, इसको कहीं काम देना चाहिए, तो इसलिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी होता है और वहां आपको काम को विस्तृत रूप से जानने और सीखने का मौका मिलता है
1: जी। टेलीविजन जर्नलिज्म अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो इसमें जो छात्र जाना चाहते हैं क्या उनके लिए और भी कोई अपॉर्चुनिटीज है कि सिर्फ एंकर बनना ही टेलीविजन जर्नलिज्म है?
0: मनीषा जी, जो एंकर पार्ट है
1: जी,
0: जैसे खासतौर से इस आपके सवाल के पहले मैं कहूं कि टेलीविजन ने एक चार्म दिया
1: जी,
0: जो स्टूडियो में खड़ा होकर के एंकरिंग कर रहा है उनका लक्ष्य पूरे देश या दुनिया से आने वाले समाचारों को उस टेलीविजन चैनल के स्टूडियो से जनता तक पहुंचाना है
1: जी।
0: लेकिन ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे लोग एंकर ही हों, अच्छे अच्छे रिपोर्टर हैं, कुछ PMO कवर कर रहे हैं, कुछ विदेश मंत्रालय कवर कर रहे हैं, कुछ लोकसभा कवर कर रहे हैं, तो डिपेंड ये करता है कि आप किस क्षेत्र में, जैसे क्या है कि टेलीविजन तो विस्तृत है, अब आपको लग रहा है कि साहित्य के फील्ड में आपकी रुचि ज्यादा है, आपको पॉलिटिकल राजनीतिक फील्ड में

0: आपकी रुचि ज्यादा है तो आप उस पर अपने को सशक्त करिए। तो लगातार जो भी आपका अपना लक्ष्य है, जो आपकी अपनी रुचि है, उस रुचि के आधार पे लगातार आपको अपने को मजबूत करना होगा। और किसी भी रिपोर्टर को, रिपोर्टर अगर स्ट्रांग नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, पॉलिटिकल कोई खबर आप करने जा रहे हैं, मानिए किसी स्टेट का चुनाव है, अब उस स्टेट के चुनाव में पॉलिटिकल स्टेटस है क्या, किस पार्टी की क्या स्थिति है, कौन सा विधायक कितने रहे हैं, कब टूटे हैं, कौन सा मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों की अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप टेलीविजन पे खड़े होकर के बोल क्या पाएंगे, क्योंकि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जिसमें पढ़ने और लिखने का बहुत सूक्ष्म समय मिलता है। इस वजह से अगर स्टोरी असाइंड है आपके पास तो आप उस खबर पे जाने से पहले प्रिपेयर्ड हो लीजिए अपने को, और अटेंडम अगर कोई खबर हो गई, बड़ी ब्रेकिंग हो गई, तो उस बड़ी ब्रेकिंग के समय आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, आपको सारी जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपको न खोल करके कुछ पढ़ने का मौका मिलता है, न कुछ जानने का मौका मिलता है, न किसी से पूछने का मौका मिलता है। अब तो स्थिति ये हो गई है, कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो गई, तो रिपोर्टर को स्टोरी अगर दी गई है तो उसको तुरंत फोनों पे ही पैच कर लिया जाता है। तो आपको फोन पे ही अपने दर्शकों को वो सारी रिपोर्टें, सारी चीजें, सारे समाचारों से अवगत कराना होता
1: है। जी सर, एक होता है ग्राउंड बेस्ड रिपोर्टिंग और एक होता है स्टूडियो बेस्ड रिपोर्टिंग और एक स्टोरी बेस्ड भी होता है, तो सर इनमें क्या अंतर है और इसको अगर कोई करने जा रहा है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छा स्टोरी डिलीवर कर सके?
0: सबसे पहले जो एक शब्द आपने यूज किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग, उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा उन नौजवानों के लिए कि आप उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में काम कर रहे हैं
1: जी।
0: कोई घटना हो गई तो सबसे महत्वपूर्ण वो रिपोर्टर हो जाता है जो ग्राउंड लेवल पे मौजूद है, क्योंकि अगर कोई बड़ी खबर है तो दिल्ली से कोई टीम आएगी, मुंबई से, पटना से, किसी भी राजधानी से, लखनऊ से, अगर वहां पे कोई टीम आएगी तो उसको आने में समय लगेगा। कोई बड़ी खबर हो गई है तो सबसे पहले जो ग्राउंड रिपोर्टर है, जो ग्राउंड जीरो का रिपोर्टर है, वो उस खबर को फाइल करता है। अब उसने जितनी जानकारियां दी, अगर लग रहा है हेड ऑफिस को कि हाँ ये खबर बड़ी है, वहां किसी और रिपोर्टर को भेजा जाना चाहिए, ओवी वैन भेजी जानी चाहिए, लाइव व्यू की वहां जरूरत है, तो चूंकि सोनभद्र और जैसे ऐसे शहरों में बहुत ऐसे टेलीविजन के संसाधन नहीं है जिससे तुरंत चीजों को किया जा सके, जब से मोजो इस्तेमाल किया जाने लगा तब से तो हर छोटे शहरों से नेटवर्क आपको अच्छा मिल रहा है तो आपको वहां से लाइव ले लेते हैं, लेकिन हमेशा से ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा तैयार होना चाहिए और जैसे भी खबर हो तो उस खबर को ग्राउंड जीरो का रिपोर्टर जो अपने ऑफिस को भेजता है उसी पे डिसाइड होता है कि हाँ ये खबर कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हमेशा जो ग्राउंड जीरो का रिपोर्टर है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद उसके सफर की राजधानी पे जाते हैं उस स्टेट की, फिर उसके बाद वो दिल्ली हेड ऑफिस में बैठता है, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। और ये तो डिपेंड करता है कि हमारी क्षमता क्या है, हम कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, मैं कितनी लोगों की नजर में हूँ, ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: जी सर, अंत में आपसे एक मेरा ये सवाल रहेगा, बल्कि कहना चाहूंगे कि उन श्रोताओं के लिए जो हमें सुन रहे हैं, खासकर वो युवा जो इस टेलीविजन जर्नलिज्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे मीडिया क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे जिससे वो मोटिवेट होकर के क्षेत्र में आगे बढ़े और सही दिशा में जा सके?
0: अपनी पूरी बातचीत में मैंने एक चीज से फोकस किया मुनीषा जी,
1: जी
0: वो ये है कि आपको लगातार अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना है। जब तक आपके पास क्षमता नहीं होगी तब तक कोई आपको पूछेगा नहीं। बड़ी चुनौतियां हैं दोस्तों, हर कदम पे चुनौतियां हैं। नौजवानों, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे में कोई आपके कदम को रोक नहीं सकता। मैंने कहा आप पत्रकारिता की पढ़ाई करें और जो पत्रकारिता के क्षेत्र की जो विभिन्न विधाएं हैं उनमें परिपक्व होइए, उनमें आप बुनियादी चीजों से लेकर के ऊपर तक की सारी चीजों को जानिए, ताकि कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको नीचा न दिखा सके। जब उसके सवाल आए सीनियर के तो जवाब आपके पास होना चाहिए। मैं एक चीज अवश्य कहना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं से कि पत्रकार होता क्या है इसको पहले आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप चिकित्सा फील्ड की खबर करते हैं, आप पॉलिटिकल खबर करते हैं, आप न्यायालय की खबर करते हैं, मतलब जो सारे विधाओं में जानकार होगा, एक्सपर्ट होगा, वो पत्रकार होता है। तो ऐसे में खुद आकलन कर लीजिए कि आप कितने परिपक्व हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितनी जानकारियां हैं, क्योंकि आपको समाज में रहना है तो सभी प्रकार की खबरों पे आपको जाना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी और अपने चैनल के माध्यम से समाज को और दर्शकों को बताना होगा कि खबर की सच्चाई क्या है। कभी भी खबर बनाने की कोशिश ना करें और कोशिश करिए कि सनसनी न फैले और जो सत्यता है, जो खबर है, उसी से आप अपनी जनता को रूबरू कराएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे होंगे वो इससे

0: मार्गदर्शन ले रहे होंगे। अगर भविष्य में वो इस ओर बढ़ते हैं तो आपकी बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद मनीषा जी।
2: दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इस मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के प्रश्न को जानने की। पर उससे पहले जान लेते हैं कि हमने कल आपसे प्रश्न किया था, उसका सही जवाब क्या है।
3: दोस्तों आज का हमारा कल का प्रश्न आपसे ये था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने ऑल इंडिया रेडियो केंद्र थे, जिसका सही जवाब है 6। और जिन साथियों ने हमें सही जवाब दिए हैं उनका नाम है रवि मौर्य समरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल भाटी बघेल लखान छत्तीसगढ़ से, अंकेश कुमार सिंह नखरा पचवरा सुनार मिर्ज़ापुर से, दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा पीपरलोड सरगांव मुंगेरी से।
2: और दोस्तों इसी के साथ जिन साथियों ने हमें जवाब दिए हैं उनके और भी नाम हैं। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा एमपी से हैं दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम नागनपुरी, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इसी के साथ ग्राम खैगा तहसील महेश्वर से जिन साथियों ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम है प्रेम लाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर एमपी से हैं सूरज वर्मा, नीरज शिवम धीरज चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर एमपी से है प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे। इसी के साथ संगीत की नगरी खंडवा से हैं श्यामा भाई और राय कवार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। तुम्हारा आज का प्रश्न है, आकाशवाणी समाचार कितनी भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, आकाशवाणी समाचार कितनी भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं। और दोस्तों आपसे बात करते करते समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। तो आज के कार्यक्रम बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे कार्यक्रम में किसी अगले अंक में। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं मोनिशा
3: और मैं सना।
2: अब हमें दीजिए इजाजत।
3: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलन का मंत्रिमंडल समिति CCEA के बैठकी में आज राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता, सार्वजनिक वितरण में स्वचालन के साथ आय योजना के एगो व्यापक योजना के तौर पर जारी रखले के मंजूरी दे दल गई। 16वां वित्त आयोग के आवंटन अवधि में यह सार्थक PDS योजना में केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपया का परिव्यय कैल जा रहा बा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतौलें कि मंत्रिमंडल का यह फैसला 80 करोड़ देशवासियों के प्रभावित करी।
1: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में, इसका एक उदाहरण दिया जाता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग की ओर से

0: करावल गईल मतदाता सूचियन के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के वैधता के बरकरार रखले हो। एगो रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के मुताबिक निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 आ ओकरे अधीन बनल नियम के तहत एसआईआर करवौले के शक्ति रखेला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE फरियाद देहले हो कि उत्तर पुस्तिकन का मूल्यांकन बदे उपयोग कैल जाए वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कौनो सुरक्षा उल्लंघन नाही भइल बा। बोर्ड सोशल मीडिया पर कैल जा रहल दावन के खारिज करत कहलस कि उत्तर पुस्तिकन का वास्तविक मूल्यांकन बदे इस्तेमाल कैल जाए वाला पोर्टल पुरहर तरीका से एगो अलग URL पर काम करेला। एगो रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सन में बढ़त तापमान के देखत लोगिन के सावधानी बरतले के सलाह देले हमें। एगो रिपोर्ट।
3: एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों से संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश में तेज घाम, भीषण गर्मी या लू से जनजीवन प्रभावित बा। ओहर मौसम विभाग राज्य में बिहने से 31 मई के बीचे बरखा भइले के पूर्वानुमान जारी कैले हो। विभाग बिहने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरखा के साथे बिजली गिरले या तेज झोंकेदार बियार चलने के अलर्ट जारी कैले बा। सतही कहीं कहीं दिन के समय लूहो चलले के चेतावनी दिहल गइल हो। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में आज एगो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आ साइकिल के टक्कर में दुई जने का मौत हो गई। ओइजा का पुलिस बतौलस कि कादीपुर दोस्तपुर राय पर सरैया बाजार के लगे भइल एह सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार के ओहिजुक मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार अस्पताले ले जा समय दम तोड़ दिलें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे वायलिन वादन। कलाकार होंगे पंडित वीजी जोग। वटवृक्ष कार्यक्रम में वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी विषय पर मनीष यादव से अन्नू जायसवाल की बातचीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत में कलाकार होंगे

रेवती सकलकर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में औद्योगिक फसलों का जैविक नियंत्रण विषय पर डॉक्टर सुहाना पुरी गोस्वामी से सतीश कुमार यादव से बातचीत के अलावा किसान भाई मंगल विश्वकर्मा के गाए लोकगीत भी सुन सकेंगे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में आप सुन सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 28 मई 2026 दिन गुरुवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स का प्रसारण समय होगा शाम 4, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन और दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे बांसुरी वादन। कलाकार होंगे अतुल शंकर।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर और रात्रि 8 बजे कलाकार होंगी दिव्यांशी पांडे। कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा रात्रि 9:30 पर और कहकशा आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। संस्कृत कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 7 बजे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सब्जियों की नर्सरी कैसे डालें विषय पर राजेश कुमार राय से सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा किसान भाई डॉक्टर माधवी सिंह के गाए लोकगीत भी सुन सकेंगे। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुन सकेंगे। सुबह 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाएं विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे सुबह 6:10 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु का समय होगा सुबह 6:30 पर। सुबह 6:35 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में उचित पोषण अच्छा स्वास्थ्य विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर आंचल सिंह। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का प्रसारण समय होगा सुबह 6:40 पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनाना सुबह 7 बजे। ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनेंगे सुबह 11 बजे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12 बजे। दिन में 1:15 पर महिलाओं के कार्यक्रम अंगनैया में बढ़ती उम्र में महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर दीपा मिश्रा से अर्चना गोस्वामी की बातचीत के अलावा महिलाएं गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगी। कार्यक्रम धरती के गीत का समय होगा शाम 5 बजे। शाम 5:15 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में होगी आज की बात, मेरी पसंद, यू डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और साथ ही युवा साथी गीत संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले ये संदेश।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहला गीत है फिल्म मैं चुप रहूंगी से। आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म अखियों से अखियों के झरोखे से, हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। गीत संगीत है रविंद्र जैन का। तो आइए सुनिए फिल्म अखियों के झरोखों से ये गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया संस्कृत समाचारों के लिए प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 5,25,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अंगीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानं अवलोक्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपनभंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या अद्य 16 वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरंतरतायै 30,25,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्य संस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन

0: अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजसः हर्षदकुमारशाहः वर्तते। यः पुणेनगरस्य डॉक्टर अभङ्गप्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम्, यत्र अनेके आपत्तिजनक अभिलेखाः, अंकीयसङ्गणकाः, दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोकनगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीय विचारैः, नवोन्मेषेण, परस्पर विश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः, संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्, तथा च सुदृढ़ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य अधिक सशक्तस्य पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30:47 इस स्टूडियो की घड़ी में हो रही है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

पंचो राम राम। पंचो देखा, आदमी के जीवन में पेड़ पौधन का बहुत बड़ा योगदान होला। आ पेड़ पौधन से ही देखा प्राणवायु मिले ले, लकड़ी मिले ले, दवाई मिले ले, आ न जाने कितना छोट मोट जौन जीव जंतु हम ना उ सब लोगन के देखा घर भी मिलेला। तो एक से कहल जाला कि देखा एक ठे पेड़ जौन है ना कि लगौले से कितना फायदा होता। आ सबसे बड़ी बात यह है कि पंचो कि गांव में अगर पेड़ पौधा न रहे ना तो देखा लोग वहाँ के लोग व्याकुल हो जी हाँ, कहे से कि देखा वहाँ जौन कि पेड़ पौधा जौन बा ना कि लोग वही के नीचे बैठ के जौन कि अपन बतही बतकही करत बाड़े, कहीं से आवत बाड़े तो वो छहात भी बाड़े, खेती किसानी से ही तल खटिया बिछा के उनके नीचे जौन कि अपन छहा भी लेत बाड़े। तो ये तरी से देखा कि पेड़ पौधा जौन हुआ कि खेती किसानी से लेकर के आम आदमी के जीवन में उनका कितना महत्व हुआ। आई कहब कि देखा भैया कि पेड़ पौधा जब कहल जाला ना कि 100 पुत्रन के बराबर एक पेड़ होला जौन है। आ देखा पेड़ पौधा जीवन में जौन है कि इतना योगदान बा कि जौन सबसे महत्वपूर्ण आदमी के लिए होला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखा एकदम निःशुल्क प्रदान करे ना। आ ऐसे जौन है कि तरह तरह के देखा दवाई भी बनले। आ संगे संगे जौन

0: कि घरे का जौन लकड़ी के जरूरत बा, चाहे खाना बनावे के, चाहे झोपड़ी बनावे के, चाहे घर बनावे के, सब जौन है कि देखा पेड़ पौधन से ही मिलेला। आ सबसे बड़ी बात यह पंचों की जौन हमन पर्यावरण है ना, जिनमें हमन रहत है यहाँ, एके भी देखा शुद्ध करण ना जौन हमारे पेड़ पौधा ही। तो देखा अधिक से अधिक जौन है ना कि अगर हमन पेड़ पौधा लगावे के तो अपन जौन है कि जौन वायुमंडल है ओकर भी शुद्धता बनी, आ देखा हमहन के रह के एक अच्छा वातावरण भी मिली। आ देखा बहुत लोग होला पंचो लोग ना कि देखा पेड़ पौधन के काट दी हैं आ ओकरे बदले में कुछ ना लगी हैं। देखा ओके काटे में तो देखा भैया 2 मिनट खाली लगला, लेकिन एक ठे पौधा लगौला आ ओके देखा वृक्ष बने में कितना टाइम लगला, कई साल लग जाला। तो काम के देखा बढ़िया बनाओ में समय लगला, लेकिन बिगाड़े में 2 मिनट खाली लगला। तो पेड़ पौधा के काटा तक हुआ अगर मान ला कोनो आवश्यकता ही हो गई तो एक पौधा, एक ठे पेड़ अगर कटला तो एक पौधा ओकरे जगह पे लगावा भी, ताकि जो है कि ओकर भी वृद्धि होत रहे, अपने समय पर वो तैयार होके जो है कि गांव घर के लोगन के, मानव जाति के सबके जो है कि प्राणवायु दे सके। आ खाली बस काटत जा अपने हिसाब से तो वो ठीक नहीं है। आ पर्यावरण के देखा सुरक्षा ये लिए भी जरूरी है कि हमन जहाँ रहत बढ़ जाए गांव घर में आ अगल बगल में सब आदमी देखा केहू ऐसा ना कि जे कि हवा के बिना जी सके। आ पर्यावरण अगर दूषित हो जाए तो देखा सांस लेव में भी समस्या है, तरह तरह के बेरामी भी हुई, आ अधिक पैसा लगी जो खेती किसानी से 4 पैसा कमात हुआ लोग ना वो जो ना डॉक्टर भैया के जाए लगी। तो ये लिए देखा बहुत जरूरी है कि हमन पेड़ पौधा के लगाई जाए, आ पेड़ पौधा के अधिक से अधिक सुरक्षित करी जाए, संरक्षित करी जाए। आ उनके साथ साथ देखा है एक घड़ी देखा गर्मी का मौसम चला था ना, तो भैया देखा एक घड़ी तेज धूप हुआ तो पेड़ पौधा देखा एक घड़ी मुरझाए लगत हुआ। तो सुबह शाम जो है ना कि उनके जो है ना कि थाला बनाए के चारों साइड से आ बढ़िया से उनके पानी भर करके उनके देवा, तो उनके भी देखा उनके भी जीवन मिली, उनकर भी उम्र बढ़े ले पेड़ पौधन के ऐसे। तो जरूरी है कि भैया जो ना कि हमन अगर कौनों पेड़ पौधन के अगर ओकर उपभोग करत है जा तो उनकर ध्यान दे भी हमन कर्तव्य हुआ। खाली उपभोग करब कर्तव्य ना है, उनकर कैसे सुरक्षा कैल जाए, वो कैसे अधिक से अधिक बढ़ें, अधिक से अधिक जो ना कि स्वस्थ रहें, ए पर भी हमन के ध्यान देवे का जरूरत हुआ। तब जो ना कि पर्यावरण सुरक्षित रही आ पेड़ पौधा भी सुरक्षित रही हैं। आ देखा एक बात कहो भैया ना कि जो ना कि शास्त्र में कहल है ना कि एक ठे जौन पेड़ होला ना वो देखा 10 पुत्रन के समान होला। तो 10 पुत्र के जौन काम करे ना वो एक ठे पेड़ खाली करेला भैया। तो ये लिए जो ना कि हम लोग के जो ना कि मिलजुल के ऐसा काम करे के चाहिए कि पेड़ पौधन के हानि ना पहुँचे। आ ये लोग भी अगर अपने स्वार्थ के कारण जो ना कि पेड़ पौधन के क्षति पहुँचावत हुआ या उनके काट देत हूँ अपने निजी कार्य में, उनके देखा प्रेरित करे के चाहिए कि भैया देखा काटत हुआ तो एक पौधा जरूर लगवा, ताकि कल के आवा वाले समय में तुहरे आवा वाली पीढ़ी के लिए वो जो ना कि एक ठे पेड़ बन जाए और उनके भी जो ना ओकर लाभ मिले, उनके हवा मिले, पानी मिले और ओकर फल मिले, ताकि जो ना कि ये परंपरा हमेशा चलत रहे। इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रही, हम सब लोग भी सुरक्षित रहे। तो भैया देखा बातचीत तो आगे भी हुई, लेकिन पंच लोगन के ये संदेश सुनवा देवल जाए।
1: ₹10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 बजे और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग, कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो श्रोताओं, हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: पंचो देखा सनेश तो हो गल, लेकिन देखा कहा अपने पंचो की देखा किसान भाई लोग तरह तरह के फसल उगावे न, आ ओकर सुरक्षा भी करा न, आ उनमें देखा कुछ फसल ऐसा होले न जोन उद्यान में पैदा करल जाने, तो उनमें भी तरह तरह के समस्या आवले। तो देखा उनमें जो न कि औद्यानिक फसलन में जैविक नियंत्रण कैसे करल जाए, ये विषय पर डॉक्टर सुहाना पुरी गोस्वामी से अपने सतीश कुमार यादव भैया का बातचीत था। तो सुना हम सुनी या किसान भाई लोग भी सुना।
4: आज हमने उनके बीच में आयल हैं डॉक्टर सुहाना पुरी गोस्वामी, जे की कार्यरत हैं मृदा विज्ञान विभाग कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आज हमने लोग इनसे जानल जाए कि औद्यानिक फसलों में जैविक नियंत्रण कैसे करे के है। सबसे पहले तो डॉक्टर मैडम, आपका हमने कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: किसान भैया लोगों के सबसे पहले तो ये बताएं कि जैविक नियंत्रण है क्या चीज।
5: जैविक नियंत्रण जो है ये वो पद्धति है, जैसे हम आजकल रासायनिक उर्वरकों का बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत उपयोग में ला रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए जैसे हमारी मिट्टी में, मृदा में, हमारी में बहुत ऐसी उपयोगी सूक्ष्म जीव है जो उसके रासायनिक उर्वरक के डालने से कमते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मृदा की जो एक उर्वरकता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसको बचाने के लिए हम इन जैविक नियंत्रण को ने दैनिक उपयोग में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
4: और एक हमने की औद्यानिक जो फसल है उनमें एक का उपयोग हो सकेला।
5: जैसे औद्यानिक जैसे फसलें हैं आपकी, जैसे सब्जियां हुई, फल हुए या फूल हुए, ये हमारे रोजमर्रा के उपयोग की चीजें हैं, खाने में सीधे संपर्क में आते हैं। कभी कभी हम सब्जियां ऐसे ही नॉर्मली पानी से धुल के हम खा लेते हैं, जैसे लेके आए खेत से और हमने उसको पानी में धुला और हमने बना के खा लिया, तो वो सीधे हमारे संपर्क में आ रहा है। तो उसके संपर्क में आने से जो भी उसके रासायनिक तत्व हैं वो हमारी शरीर में भी जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उससे बचाने के लिए भी हम इस जो जैविक नियंत्रण है जिसमें आपका कई प्रकार के सूक्ष्म जीव आते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी परजीवी होते हैं जिनकी वजह से कुछ जो बोलना चाहिए घातक जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बचाने के लिए हम उन परजीवों को उपयोग में लाते हैं। तो उसको जब उपयोग में लाते हैं तो जो चाहिए आपके घातक जो घटक हैं उनको हम इसके माध्यम से कम कर सकते हैं।
4: तो जो आप घातक घटक बताओ थे इसमें क्या क्या चीज आवेला, इतने किसान भी
5: जो बोलना चाहिए। जैसे कि अब जो जैविक नियंत्रण है इसके तीन मुख्य घटक हैं। पहला है आप परजीवी और दूसरा है आपका सूक्ष्म जीवी और तीसरा है आपका परभक्षी। तीन जो ये घटक हैं ये इनके द्वारा हम जो है जैविक नियंत्रण आराम से कर सकते हैं। और इन तीनों को जब हम जैविक नियंत्रण आराम से करेंगे तो इसकी वजह से बोलना चाहिए मृदा की उर्वरकता पे भी फर्क पड़ेगा। उसकी जो बोलना चाहिए आज जो स्थिति है मिट्टी की वो बहुत खराब है,

0: तो उसके माध्यम से भी हम इसको आराम से सही कर सकते हैं। और जैसे कि किसानों को बहुत सारी चीजें देखने में आती हैं कि कहीं ये समस्या है, कहीं वो समस्या है, तो इसके उपयोग से भी हम उनकी समस्याओं को कई हद तक कम कर सकते हैं।
1: अच्छा, एक जो विधि आप बताओ
0: जी
1: थे, वो करी विधि में बड़ी किसान उनको बताएं कि हमें क्या क्या विधि वो लोग अपनावे जिन्होंने से उन्होंने फायदा हो।
0: जी जैसे आजकल जो है, एक आता है येलो स्टिकीट रैप आ रहा है, एक ब्लू स्टिकीट रैप आ रहा है,
1: अच्छा।
0: जैसे महू लगता है जिसको हम एफिड बोलते हैं, जैसिड बोलते हैं, या सफेद जो बोलना चाहिए मक्खी होती है, ये क्या करते हैं, ये बहुत सी जो सब्जियां होती हैं, बोलना चाहिए मुख्यतः देखना चाहिए कि ये सब्जियों पे ज्यादा अटैक करते हैं, सब्जियों पे इनका बोलना चाहिए प्रभाव ज्यादा होता है। तो इनको आपको पहले ही, जैसे आपने जैसे इनको लगाया है, उसी दौरान अगर आपको कुछ दिख रहा है कि कोई कीड़ा लग गया है, कोई मक्खी लग गई है, तो उसका हम कैसे निवारण करें? तो अगर आपको शुरू में ही आप वैज्ञानिक से आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या आजकल कृषि विज्ञान केंद्र है ही हर जगह, तो वहां जाके आप परामर्श ले सकते हैं। और अगर सही जगह पे सही समय पे आप परामर्श लेंगे, तो ये जो सारी चीजें हैं ये धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और एक और है कि जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो जैसे देखा जाए तो नीम ऑयल, जो आपका नीम की पत्तियां हैं उससे ऑयल निकाल के उसका स्प्रे किया जाता है, तो इसके थ्रू भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं।
1: तो जो इन नीम का तेल आप बताओ थे, ये तो भाई हमारे किसान लोगों के लोगों का घरेलू उपाय है, घर
0: जी
1: में मिल भी जाला। तो
0: बिल्कुल,
1: एक अगर छिड़काव कल चाहता हूँ तो
0: हाँ
1: मैं
0: जी,
1: कैसे करें ऊपर छिड़काव?
0: जैसे नीम नीम जो ऑयल है वो ऐसा नहीं है कि आपके जो कीट लगे हैं, कोई रोग लगा है आपकी फसल में, तो उसको वो मारेगा, ऐसा नहीं है। बस ये है कि वो उसको दूर करेगा, क्योंकि नीम में जो है एक तत्व होता है, जैसे जिसको हम एज अ डायरेक्टिन बोलते हैं, ठीक है, वो तत्व क्या होता है, ये जो आपके कीट हैं, रोग हैं, इनमें जो भी अंडे दे रहे हैं उन कीटों को ये दूर भगाता है। और धीरे धीरे जब आप इसको डालेंगे, तो ये मुख्यतः आपको डालना है कि जब आप कोई बोनी करने जा रहे हैं, आप किसी चीज का बीज बोने जा रहे हैं, बोनी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप मिट्टी में डाल दीजिए। और अगर आप उस टाइम नहीं डाल पाए हैं, तो जब आपका जो पौधा है थोड़ा सा बड़ा हो, उस टाइम आप इसका छिड़काव कर दीजिए। और अगर उस टाइम पे भी आप नहीं डाल पा रहे, इसका एक जो है सही समय, यानी कि आपकी बोलना चाहिए फूल आने से पहले, फूल आने से पहले आप इसको डालिए, और इसके जो बोलना चाहिए प्रमाण है वो बहुत अच्छे मिलेंगे आपको।
1: अच्छा मैडम, देखे मैं वाला कि लोग फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें
0: जी
1: ना, ये
0: जी
1: क्या चीज है मेरे किसान करो?
0: फेरोमोन जो ट्रैप है वो हम इसलिए यूज करते हैं कि जो मादा होती है, जो मादा की जो गंध होती है, वो नर को आकर्षित करती है अपने तरफ, तो जिससे जितने भी नर हैं वो मादा से आकर्षित होके उस फेरोमोन ट्रैप पे, जो पीले कलर का होता है और नीले कलर का, उस पे आके चिपक जाते हैं, तो इससे भी हम नियंत्रण कर सकते हैं कीटों का और रोगों का।
1: अच्छा मैडम, ये बताएं कि जैविक नियंत्रण जो के विषय में हमने के बतियाओ थी जा, तो
0: जी
1: एकर हमने की फसल चक्र और मिश्रित खेती में का महत्व हो सकेला, एकरी बारे में बताएं।
0: जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही फसल पे एक फसल लेते हैं या दो फसल लेते हैं, तीसरी फसल लेने में उनको थोड़ा लगता है कि, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अगर किसी ने धान ले ली तो वो धान ही लगाएगा, गेहूं ले लिया तो गेहूं ही लगाएगा। तो फसल चक्र का ये मतलब है कि अगर आप अलग-अलग फसल लेंगे, तो जो आपके घातक जो कीट हैं, तो उनकी जो बोलना चाहिए जीवन चक्र जो है उस पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं, तो उनका चक्र जो है, क्योंकि उसको तो पता है मुझे खाने मिल रहा है जो मुझे चाहिए, तो जैसे ही वो अपने अनुकूल देखेगा वैसे ही वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो उस वजह से अगर आप उसका फसल चक्र ही तोड़ दें, तो उसकी क्या है कि उसका धीरे धीरे साइकिल जो है टूट जाएगा, और साइकिल टूटेगा तो इनकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो एक होती है मिश्रित खेती, जैसे फ्रूट्स लगाते हैं, फल लगाते हैं, उसके बीच में जगह जो खाली रहती है उसमें हम सब्जियां भी लगा सकते हैं, तो ये इसलिए जरूरी रहती है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा महामारी टाइप का आप समझ लीजिए, तो वो जब होता है तो उससे क्या होता है कि आपकी सब्जी तो चली गई लेकिन आपका फल बच गया।

0: तो उसके साथ भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि कीट जो होता है वो खुद ही भटक जाता है कि मैं किस उस फसल में जाके लगूं, तो इससे उसका फसल चक्र धीरे धीरे कमजोर होता है और उसको खाने की जो जरूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो इससे भी हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे हमारे किसान भी लोग जैविक विधि से नियंत्रण अपनी खेती में
0: जी
1: करते
0: जी
1: लोग कीटन से, तो इससे उन्होंने का लाभ मिली एक बारे में बताएं, कहा से कि हमारे किसान भी लोग ये भी जानना चाह रहा कि भाई हम अगर ये विधि के अपनाओ
0: हाँ
1: थे
0: जी,
1: तो उससे का हमके लाभ हो।
0: इससे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ देखा जाता है कि मिट्टी की जो धीरे धीरे बोलना चाहिए हालत है खराब हो रही है, उसकी हालत सुधारने के लिए हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। तो हम अब किस पे जा रहे हैं, या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जा रहे हैं या जैविक नियंत्रण पे जा रहे हैं। तो अब जैविक नियंत्रण ऐसा नहीं है, बस यहाँ जो किसान भाई हैं उनको थोड़ा सा यहाँ संयम रखना पड़ेगा कि ये धीरे धीरे जो है अपना असर छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया और आप सोचें कि हमारी आज ही जो है यील्ड बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई। उसको समझने के लिए ये धीरे धीरे जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है इसके लिए कि आप जो बोलना चाहिए ट्रेनिंग्स होती हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, वहां आपको जाके ये करनी चाहिए और उनको भी करानी चाहिए। क्योंकि जो नई तकनीकी हैं, तकनीकी हैं जो नई तकनीक्स हैं वो वहीं जाके आप सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ अच्छे एजेंट्स भी होते हैं, जैसे हमारी मिट्टी है। अब मिट्टी में बहुत अच्छे बोलना चाहिए सूक्ष्म जीव भी हैं, बहुत खराब भी हैं। तो कुछ ऐसे अच्छे एजेंट्स होते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, आपका ब्रिवेरिया वैसियाना हो गया, और नीम ऑयल जो होता है, इनके उपयोग से भी हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इनको आप लैब में ग्रो करा के जो आपका खेत है उसमें आप इसको डाल सकते हैं। तो ये जो बोलना चाहिए जो आपके घटक हैं उनको भी, उनके साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो आपके बोलना चाहिए अन्न उपयोगी जो है कि जो सही आपके सूक्ष्म जीव है उसको कार्य करने से जो रोक रहे हैं, जो कीट रोक रहे हैं, जो रोग रोक रहे हैं, उनको भी ये उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: अच्छा एक और चीज हम आपसे जानना चाहब कि अगर हमारे किसान भी लोग
0: जी
1: जैविक विधि से कीट का नियंत्रण करत है लोग, तो वो बीच में का का उनके निगरानी या कह लो कि ध्यान रखे के
0: जी,
1: एक बारे में तनी बताए।
0: निगरानी उनको ये करनी है कि जैसे कोई रोग आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो एक बार वो अपना मिट्टी परीक्षण भी करा लें कि किस वजह से आ रहा है। और अगर मिट्टी में ऐसा कुछ नहीं है तो वो अपना बोलना चाहिए उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस बोलना चाहिए परिस्थिति में आ रहा है। जैसे शुरू में लगाया तब आया, या फूल लगने से पहले आया, या बोलना चाहिए हाइट बढ़ने से, जो उसकी जितनी भी है हाइट उसके बढ़ने से पहले आए, तो उसको शुरू से लेके लास्ट तक निगरानी रखनी पड़ेगी जब तक उसमें फल नहीं बन जाता है। क्योंकि फूल के बाद फल ही बनता है। वो फूल जितनी भी ये कीट हैं ये फूल के पहले और फूल लगने के बाद ही इनका बोलना चाहिए अटैक होता है।
1: अच्छा डॉक्टर मैडम, हम ये आपसे वो बात और जानना चाहब कि अगर मान ली जैविक विधि से लोग अपने फसल की सुरक्षा करत हों
0: जी,
1: तो इसे आवे वाली भविष्य की पीढ़ी के का फायदा हुई, एक बारे में बताएं।
0: इनके लिए ये जैसे आजकल हम सोच रहे हैं, चल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे ही नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य धरना पड़ेगा। क्योंकि जो पहले होता था, जो पुराना जो हमारा इतिहास था उसमें होती जो खेती होती थी वो पारंपरिक खेती होती थी। उसी पारंपरिक खेती को हमको आगे लेके आना है, लेकिन एक नए आवास में लेके आना है, नई तकनीकों के साथ लेके आना है। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें। तो उसको हमको बढ़ावा देना है जिससे कि जो भविष्य में जो एक टिकाऊ खेती जो आजकल जो बहुत चल रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती, उसके साथ उसको हम बचा के रख सकें। जो हमारी धरोहर है, जो हमारे बोलना चाहिए इतने रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा के रख सकें। तो इसके लिए भविष्य में इसकी बहुत जरूरत है और इसको सभी को करना चाहिए। जितने भी किसान भाई हैं उनको ये सारी चीजें, ये पद्धति अपनानी चाहिए।
1: बिल्कुल, हम लोग भी अपने कह जाओ कि रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या कह जाओ कि वैज्ञानिक भैया लोग भी आगे
0: जी
1: बताए ना कि अपनी खेती में जितना से
0: जी
1: ज्यादा
0: जी
1: हो सके जैविक विधि अपनावे के, सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो
0: जी
1: ये विधि से अगर लोग अपनी फसल में कीट का
0: प्रयोग, हाँ
1: प्रबंधन
0: जी
1: करें या कीट के रोके का प्रबंधन करें
0: जी
1: तो ओके रोकल जा सकेला। तो डॉक्टर सुहाना पुरी गोस्वामी जी, आप हमने की कार्यक्रम कृषि जगत में ही नहीं एक आपके

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचों, देखा औद्यानिक फसलों का जैविक नियंत्रण, ये विषय पर डॉक्टर सुहाना पुरी गोस्वामी से अपने सतीश कुमार यादव भैया बातचीत करत रहना है। एक एक बात बहुत फरिया फरिया के पूछ पूछ के जानकारी देना है कि कैसे जो ना कि फसल का सुरक्षा करल जाए जैविक विधि के माध्यम से। तब भैया का जो ना कि बातचीत तब बहुत नगद रहे। अब देखा ही कहम ना कि पंचो, अब सोचल हो बालो कि जो ना कि खाली अपने बातचीत करत हुआ कुछ सुनवा सुनवा उतना हो मन मनसा ना कराओत हुआ, तो देखा ही मंगल विश्वकर्मा का गौ नहीं है, सुना लो पंचो लोग।

पंचो, हम गवनवा नहीं जेबे बिना रे झूलनी। ई देखा मंगल विश्वकर्मा बहिन रनी है आ इतना बढ़िया देखा ई गवनई सुनौनी है कि मन एकदम फरहर हो गेल।

आ देखा अभी कहम ना कि यही लगे जो ना कि कल अपने पंचायती में जौन कार्यक्रम होए वाला है ओकर भी जानकारी पंच लोग के दे दही। तो देखा काल सवेरे जो ना कि 6:05 पर अपने खेती की बातें कार्यक्रम में मिट्टी में जीवांश का काम महत्व है ये विषय पर जानकारी दिया दिनेश कुमार सिंह। आ कल सांझी के 6:30 पर जौन ये अपन कृषि जगत कार्यक्रम है इनमें देखा बातचीत सुनवावल जाई सब्जियों की नर्सरी कैसे डालें ए विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार राय और सतीश कुमार यादव भैया का बातचीत हुई। तो ये बातचीत के जौन भैया लोग जरूर सुनिए जौन बहुत नगद हुआ। आ देखा भैया ये कहम ना कि देखा गर्मी बहुत अपने भीषण रूप में चला था अगर घर से बाहर भैया लोग अगर निकला ना तो देखा गमछा वगैरह ले कर निकला आ ठंडा पानी पी के निकला। आ देखा जौन एगरी जौन कि मौसमी जौन फल है ना जैसे ककड़ी हिरमाना बा ई कुल के खाए भी जो ना वैसे भी स्वास्थ्य भी सही रहेला। आ देखा सवेरे साँझे नहाए भी ठंडा पानी से। आ सबसे ज्यादा देखा विशेष बात ही कहा हम ना पंच लोग कि भैया देखा घरे में देखा किसान भाई लोग के गोरू चौवा भी हुआ तो गोरू चौवा देखा अनबोलता जानवर हुआ उनके प्यास लगी ना तो ना बोलिए कि हम पानी पियावा। लेकिन भैया एक ध्यान पूर्वक रख करके सवेरे आ साँझी के आ दोपहरिया में उनके पहले तो छाहें बांधा छाहें बनले के बाद उनके 3 टाइम जो है ना कि उनके पानी जरूर पियावा। आ उनके जो है ना कि जैसे तू नहा हुआ लोग ना कि ठंडा बदे ये तरह उनके भी सुबह शाम कम से कम जो है ना कि ठंडा पानी से उनके धोआ इससे कहा कि उनकर भी जो है ना कि शरीर का जो स्वास्थ्य हुआ शरीर का जो गर्मी है वो सब निकल जाई आ उनके भी जो है ना कि गर्मी से बचाव मिली। तो ये सब का बात का ध्यान अगर हमन रख के तो हमनों स्वस्थ रह के हमन के गोरु चौवा भी स्वस्थ रही हैं। तो देखा पंचो पंचायती में देखा बातचीत तो अब जो ना कि इच्छा होता कि अब किसान भाई लोग से अपन इजाज़त लेवल जाए। तो पंचो राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: गिनती देश किसान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म साजन की बाहों में। इस फिल्म से कुमार शानू की आवाज़ में समीर की रचना और नदीम श्रवण का संगीत। तो सुनिए फिल्म साजन की बाहों में से ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म साजन से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार काजल कुमारी पुत्री श्रवण कुमार, जो ग्राम बीहड़ थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र की निवासिनी है, ये दिनांक 11 सितंबर सन 2025 से कहीं लापता हैं। काजल कुमारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 16 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंखें व बाल काले, लंबाई 4 फीट लगभग 3 इंच, एक हरा बदन है। लापता होने के समय ये हरे रंग की टॉप और नीला जींस पहनी थी। काजल कुमारी के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो वो कृपया अपने निकटवर्ती थाने या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को सूचित करने की कृपा करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार विशाल कुमार पुत्र संजय कुमार जो अमवार बाजार थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये दिनांक 11 सितंबर सन 2025 से लापता हैं। विशाल कुमार के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 16 वर्ष, रंग सांवला, चेहरा गोल, आंखें व बाल काले, लंबाई लगभग 4 फुट 5 इंच, इकहरा बदन है। ये लापता होने के समय छींटदार सफ़ेद शर्ट व नीला जींस पहने थे। विशाल कुमार के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो कृपया अपने निकटवर्ती थाने या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार आरती कुमारी पुत्री बसंत पाल जो ग्राम झारो खुर्द पोस्ट झारो कला थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश की निवासिनी हैं, ये दिनांक 20 मार्च सन 2026 से लापता हैं। आरती कुमारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 12 वर्ष, चेहरा लंबा, रंग सांवला, आंखें व बाल काले, लंबाई लगभग 3 फुट 5 इंच, दुबली पतली बदन की हैं। ये लापता होने के समय स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। आरती कुमारी के बारे में जिस किसी सज्जन को जानकारी हो कृपया वो अपने निकटवर्ती थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को सूचित करने की कृपा करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 7:20 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। हमारा अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसी

0: राज्यों को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से PDS संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।
2: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है SIR कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम ₹30 होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और

0: समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
1: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है जहाँ पे डीएम और एसपी स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है।
0: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं गुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों को का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
2: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें, किसी उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:31 इस स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म आवारा से, आवाज मुकेश की, शब्द रचना है शैलेंद्र का और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म उड़न खटोला से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी का ये गीत और नौशाद का संगीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म मेला से, आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार शकील बदायूनी और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म हीर राजा से, आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार कैफी आजमी और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म हवस से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, सावन कुमार का गीत और उषा संगीत, उषा खन्ना का संगीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं रेवती सकलकर।

इसी नगमे के संग कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त हुआ। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज के कलाकार थे रेवती सकलकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रस माधुरी।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसमाधुरी। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म उमंग से, आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार नीरज और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म तीसरी कसम से, आवाज मुकेश की, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शब्द साहिर लुधियानवी की और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, किशोर कुमार की आवाज़, अनजान का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म लोफर से। महेंद्र कपूर की आवाज़ है, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत से सवार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म तूफान और दिया से, आवाज गीता दत्त की, भरत व्यास का गीत और संगीत से संवारा है बसंत देसाई ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म आपकी परछाइयाँ से। आशा भोसले की आवाज़, राजा मेहदी अली खान का गीत और मदन मोहन का संगीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसमाधुरी यहीं संपन्न हुआ। यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल

0: जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।

0: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच

0: मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period, with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
2: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severely affected due to the intense heat waves sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain

0: 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं तनवीरुल फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मश्क आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि AI की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज GPS के जरिए ट्रैकिंग और QR कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम PDS के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस समत में PDS को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये अकदाम PDS के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निजाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का

0: रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े एआई पर मबनी मॉड्यूल होंगे जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक एआई की क्यादत वाली रियल टाइम पीडीएस मुस्तफेदीन का निज़ाम है, आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई जहानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम एआई पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज़ के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81 करोड़ 35 लाख अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा पीडीएस स्कीम की जगह नहीं लेगी।
0: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में, और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की, किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहिनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमुई तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
1: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि

दादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आज़ाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें चार दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरिक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज़्म रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिन 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर्रेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी।
आखिर में खास खास खबरें एक बार

0: फिर मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिक के ISSF आलमी कप में इंतलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेब्स OTT और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 9:30 और 22 सेकंड स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन।

0: जाएंगे, दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के

0: फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, दामने यार तक नहीं पहुंचा, हो गया वो कफत से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना।
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता। मायूस मेरे दर से सवाली।

जर्ब से बढ़ के हो इतना नहीं मांगा जाता, जर्ब से बढ़ के हो इतना नहीं मांगा जाता, प्यास लगती है तो दरिया नहीं मांगा जाता, और चांद जैसी भी हो बेटी किसी मुफलिस की मगर, चांद जैसी भी हो बेटी किसी मुफलिस की मगर, ऊंचे घर वालों से रिश्ता नहीं मांगा जाता।

किस्मत दिया हती। शहनाइयां उसे भी बुलाती रही मगर, शहनाइयां उसे भी बुलाती रही मगर, हर मोड़ पर जहेज की कुर्बान गाहती। और वो चाहती थी रूह उसे

दादी को कल इन आँखों से मैंने देखा था, ठीक उस वक्त मुखलिसी ने मेरी हंस के मेरा मिजाज पूछा था।

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम अंजुमन यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज के कलाकार थे मनहर उदास, अल्ताफ रजा और सोनू निगम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम वट वृक्ष। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:09 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वट वृक्ष। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी विषय पर मनीष यादव से अन्नू जायसवाल की बातचीत।
1: नमस्ते, मेरा नाम अन्नू जायसवाल है और आज हम लोग बट ब्रिज कार्यक्रम में आए हुए हैं। और बट ब्रिज कार्यक्रम में आज हमारे बीच में जो वृद्धावस्था है के बीच में होने वाली बीमारियां हैं, थर्मल थेरेपी के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे पास मनीष यादव जी बैठे हुए हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये थर्मल थेरेपी होती क्या चीज़ है।
2: थर्मल थेरेपी के बारे में आप जानकारी लेने के लिए मुझे बुलाया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थर्मल थेरेपी एक तरह की गर्म थेरेपी होती है, हीट थेरेपी। इसके इस्तेमाल करने से इंसान के शरीर में होने वाले दर्द, सूजन, इस तरह की बीमारियों में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। थर्मल थेरेपी का मतलब होता है किसी भी प्रकार से शरीर को गर्मी देना, एक गर्मी शरीर के अंदर प्रवेश कराकर उनके तकलीफ में राहत देना, ये थर्मल थेरेपी का मुख्य काम है। थर्मल थेरेपी की जो शुरुआत है, अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत साउथ कोरिया से हुई है। आज हमारे भारत देश में भी काफ़ी जगहों पर थर्मल थेरेपी के इस्तेमाल कराया जा रहा है। दूसरी चीज़, थर्मल थेरेपी के अंदर अगर आप देखा जाए तो ये एक सेफ तरीका है शरीर से दर्द को ख़त्म करने का।
1: तो सर, जैसा कि आपने बोले गर्म थेरेपी, तो ये गर्म थेरेपी क्या चीज़ होता है, किस चीज़ की गर्मी होती है?
2: थर्मल थेरेपी में हम जो हीट का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, वो FIR रेज होती है, जैसे कि फार इंफ्रारेड रेज। इसको अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो ये होती है सूरज से मिलने वाली सुबह की धूप। अर्ली मॉर्निंग जो सुबह की धूप होती है वो काफ़ी कोमल होती है और इंसान के शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इसीलिए हम लोग थर्मल थेरेपी के अंदर इस प्रकार की गर्माहट का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है।
1: ये जो होता है फार इंफ्रा रेड रेस की गर्मी होती है, तो ये किस प्रकार के उपकरण से कराई जाती है, कैसे ये होता
2: जी,
1: है?
2: इसके लिए तमाम प्रकार के उपकरण बनाए गए हैं, जिसमें से एक होती है हीटिंग मैट। हीटिंग मैट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर एक स्टोन लगाते हैं, विशेष प्रकार के वो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं। जब उनको ताप उनको गर्म किया जाता है, यानी कि उसको जब किसी बिजली के उपकरण से उसको जब गर्माहट दी जाती है तो उसमें से FIR रेज निकलती है। और उसको यूज़ करने के लिए कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, जैसे कि बेडशीट वगैरह कॉटन की, कपड़े जो पहनकर हम लोग थेरेपी कराते हैं वो भी कॉटन की होती है। कॉटन के बेडशीट का इस्तेमाल बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए करते हैं सेफ्टी के पर्पज़ से।
1: अच्छा सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कॉटन कपड़ा, तो ये FIR रेस जो होता है, तो कॉटन का जो कपड़ा ये तो सही है, लेकिन जैसे कैसा कपड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए कि कैस किस प्रकार का कपड़ा होना चाहिए?
2: लाइट कलर का कपड़ा रहेगा तो अच्छा है। वैसे हम लोग जहाँ कराते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि सफ़ेद कलर का कपड़ा यूज़ करें।
1: तो सर, ये जो उपकरण आप बता रहे हैं कि स्टोन, तो स्टोन के माध्यम से ही सारी थेरेपी कराई जाती है?
2: जी,
1: इसमें किस प्रकार की मशीनें, क्या चीज होता है?
2: इसमें कई प्रकार की मशीनें होती हैं आजकल, देखिए कई तमाम प्रकार की, जैसे कि एक तो हो गई हीटिंग मैट। हीटिंग मैट वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसको, देखिए आजकल जितने भी उपकरण आते हैं सब चलाने के लिए बिजली का सहारा लेना पड़ता है, तो ये जो हीटिंग मैट है इसको भी चलाने के लिए बिजली का सहारा लिया जाता है। लेकिन उसके लिए हम लोग उस मैट के अंदर एक ऐसी सिस्टम को बनाया जाता है, एक ऐसा रिमोट बनाया जाता है जिससे कि वो मैट के अंदर जो करंट आता है वो DC करंट में कन्वर्ट हो जाता है, बैटरी करंट में, ताकि किसी प्रकार की कोई उनको बिजली के करंट से कोई नुकसान ना हो। तो उसको पूरी सेफ्टी के साथ बनाया जाता है। एक तो हो गई मैट, दूसरे नंबर पे
1: तो
2: एक...

0: कहती है हीटिंग बेड। तो हीटिंग बेड का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ हीटिंग बेड होते हैं उसके ऊपर इंसान अगर लेट कर थेरेपी करे तो उसकी स्पाइन के ऊपर से मसाज होती है, मसाज करके वो हीट को शरीर के अंदर प्रवेश भी कराती है, साथ साथ में मालिश भी करती है। तीसरे नंबर पे और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे बेल्ट आते हैं, जैसे कि आपको पर्टिकुलर जगह पे इस्तेमाल करना है, कमर में इस्तेमाल करना है, तो एक हीटिंग बेल्ट आती है, आप उस बेल्ट को भी लगाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा, और इन सब में वही स्टोन के माध्यम से ये सारी चीजें कराई
0: जी,
1: जाती
0: वो जो
1: हैं।
0: स्टोन होते हैं साउथ कोरिया में ही ज्यादातर बनते हैं, वहां से ही आते हैं। उस स्टोन को बनाने के लिए कई प्रकार के स्टोन यूज किए जाते हैं, मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे कि स्टोन के अगर नाम ले तो जिसमें जर्मेनियम, सल्फर हो गया,
1: जी
0: सिल्वर हो गया, इस प्रकार से तमाम प्रकार के स्टोन्स होते हैं जिनको मिक्स करके इस स्टोन को बनाया जाता है। और इन स्टोनों की खासियत ये होती है कि जब ये गर्म होते हैं तो इसमें से FIRS निकलती है।
1: तो उसी के माध्यम से सारी थेरेपी
0: जी
1: कराई
0: जी
1: जाती है।
0: इसी से कराई जाती है।
1: अच्छा, तो सर क्या इसको केवल वृद्धावस्था के लोग ही ले सकते हैं कि सभी कोई ले सकते
0: ये
1: हैं?
0: जो थर्मल थेरेपी है, जैसे आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए तो लोगों का काम जो है ज्यादातर बैठकर है, वर्क फ्रॉम होम भी आजकल चल रहा है, लोग बैठकर ज्यादा काम करते हैं, साथ ही साथ मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत सारा हो रहा है।
1: ये क्या वृद्धावस्था के लोग ही कर सकते हैं सर?
0: देखिए अनु जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृद्धावस्था में ही इसको किया जा सकता है। जैसे कि आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार से हमारा रहन सहन है, तो उस रहन सहन खान पान के अनुसार अगर हम देखें तो कम उम्र के लोगों को भी बैक पेन शुरू हो जा रही है आज के समय में। उम्र का कोई लेना देना नहीं है, कम उम्र में भी लोगों को कमर दर्द, सर्वाइकल, आजकल जो मोबाइल का चलन बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो मोबाइल की वजह से लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, कम उम्र में भी हो रही है। लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो इससे भी लोगों को बैक पेन वगैरह काफ़ी हो जाती है। तो ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी जिनके शरीर में किस प्रकार की कोई परेशानी है, तो उसमें राहत देने के लिए कम उम्र के लोग भी कर सकते हैं। ये कहना चाहूँगा कि बुजुर्ग अवस्था के लोगों को ये ज़्यादा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि उनके पास उनके उस अवस्था में, जैसे जब व्यक्ति 40 के ऊपर जाता है, तो जैसे हम 40 के ऊपर जाते हैं उसके बाद हमारे शरीर से मसल्स जो है 1% से कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि शरीर की जो मसल्स कमज़ोर होती है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। बुजुर्ग अवस्था में मसल्स की मात्रा कम हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से उनके शरीर में दर्द ज़्यादा रहता है, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है।
1: तो जैसे ये कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, तो कमर में घुटने के दर्द के लिए सर ऐसा कौन सी मशीन है जिसपे की थेरेपी करें तो काफी रिलीफ मिलेगा? ऐसा क्या चीज होना चाहिए?
0: देखिए हमारे पास एक थर्मल जो मैट, थर्मल मैट जिसको बोला जाता है, थर्मल मैट के इस्तेमाल से घुटने दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, लगभग सभी चीज़ों में लाभ मिलता है।
1: तो ये थर्मल मैट जो हो बता रहे हैं आप, तो थर्मल मैट में क्या चीज लगा हुआ है?
0: थर्मल मैट में मैम एक तरह का विशेष प्रकार का स्टोन लगा है, पत्थर लगा है,
1: अच्छा,
0: उस पत्थर से जो गर्माहट मिलती है वो FIRS की मिलती है, उस इसी वजह से ही फायदा होता है।
1: तो ये स्टोन कितने मात्रा में लगा हुआ, उसमें क्या एक दो लगा हुआ है या कैसे लगा हुआ
0: नहीं, ये
1: है?
0: छोटी छोटी साइज में होते हैं, एक मैट में लगभग 1000 के ऊपर स्टोन लग जाते हैं और छोटे छोटे साइज में होते हैं, तो इंसान को उस पर लेटने में भी कंफर्टेबल रहे इसीलिए उसको इस तरह से बनाया जाता है। उसको उपकरण को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान रहे, इसलिए छोटे छोटे स्टोन्स को इसके ऊपर लगाया जाता है ताकि वो सुविधाजनक हो और व्यक्ति उस पर आराम से थेरेपी कर सके।
1: तो इस पे क्या छोटे बच्चे भी थेरेपी कर सकते हैं?
0: छोटे बच्चे भी कर सकते हैं मैम, लेकिन बच्चों को रहा बात बच्चों की, तो बच्चे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए बच्चों को थेरेपी करा तो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप अपने पर्सनल डॉक्टर हो उनका सलाह लेना बहुत ज़रूरी है।
1: और सर जैसा कि देखा जाए इस समय बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, अनेक प्रकार की, कमर में घुटने के साथ साथ आप देखिए तो अभी गठिया जैसी बीमारी भी बहुत लोगों को हो रहा है। तो क्या गठिया जैसी बीमारी के लिए भी ये जो आप बता रहे हैं थर्मल थेरेपी में मैट है, तो क्या उससे उसका बेनिफिट मिलेगा?
0: बिल्कुल मैम, उससे लाभ तो ज़रूर मिलेगा। देखिए गठिया में इसका लाभ इसलिए भी मिलेगा क्योंकि गठिया में क्या होता है कि इंसान के शरीर में ठंड के मौसम में, गठिया वाले जितने भी पेशेंट होते हैं अगर आप देखेंगे, जो भी लोग हैं ठंड के मौसम में, उनके उनकी जो तकलीफ़ है थोड़ी बढ़ जाती है, और जैसे ही उनके शरीर के अंदर गर्माहट दी जाती है तो गर्माहट से क्या होता है उनको थोड़ा सा उस दर्द में आराम मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के समय में लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है
1: जी
0: वो उसमें नमी आ जाती है,
1: जी
0: तो नमी आने की वजह से वो दरवाज़ा

0: ठीक से नहीं बंद होता,
1: बिल्कुल
0: सही है। तो इसी प्रकार से गठिया वाले पेशेंट्स की हड्डियों के अंदर भी इसी प्रकार की कुछ परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। अब ऐसे में जब वो थर्मल थेरेपी की मैट का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी दर्द भी कम होता है, सूजन भी कम होती है, और काफ़ी अच्छा राहत जो है गठिया वालों को इससे मिलता है।
1: मतलब कि इससे काफी अच्छा
0: जी
1: फायदा
0: जी
1: मिलता है।
0: इसको लंबे समय तक करना पड़ता है, काफ़ी समय तक करना पड़ता है, क्योंकि गठिया की जो परेशानी है इतने आसानी से ठीक नहीं होती है, तो इसके लिए उसको लंबे समय तक करना पड़ता है।
1: अच्छा, जैसा कि सर अभी आप बता रहे थे कि अभी हम पूछे कि आपके यहाँ किस किस तरह की मशीनें हैं, कौन से उपकरण से थेरेपी कराई जाती है, तो आप बताएं कि बेड है और उस पर लेटते हैं, मसाज होता है, तो ये जो बेड है उस पर लेटते हैं, ये मसाज किस तरह से होता है?
0: देखिए, ये जो थेरेपी वाले जो बेड हैं, ये बेड इस तरह से बनाए जाती हैं कि ये आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी पर, ये मशीन के जो रोलर होते हैं रीढ़ की हड्डी पर चलते हैं, और कुछ उपकरणों में पैरों की तरफ भी लगाए जाते हैं रोलर, जैसे कि पैर की भी मसाज होती है और रीढ़ की हड्डी की। तो रीढ़ की हड्डी पे एक रोलर होता है जो कि इसी स्टोन से बनाया जाता है, वो मसाज करते हुए आपके सर्वाइकल, थोरासिस और लुम्बर तीनों जगहों पर ये गर्माहट के साथ मसाज करता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं, उनको गर्माहट मिलती है, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सही तरीके से आ जाता है। क्योंकि शरीर का जो मेन, अगर देखा जाए तो इंसान के शरीर का जो मेन चीज़ है वो रीढ़ की हड्डी है,
1: जी
0: तो रीढ़ की हड्डी अगर सही रहेगी तो आपके शरीर की सारी संरचना सही रहेगी। तो थर्मल थेरेपी में जो बेड का निर्माण किया गया है, लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मल थेरेपी में जो बेड है, उसका मेन काम यही है कि आपकी स्पाइन को सही दिशा में रखें।
1: अच्छा, मतलब कि जब अगर इस बेड पे, हाँ, जो भी व्यक्ति, अगर किसी को प्रॉब्लम है कमर में और सर्वाइकल जैसे दिक्कत है, अगर वो लेटता है तो उसकी ये जो भी ये दिक्कत है तो धीरे धीरे
0: हाँ
1: उसको
0: बिल्कुल,
1: रिलीफ मिलता है।
0: सर्वाइकल, थोरासिस और लुम्बर, ज़्यादातर
1: जी
0: देखिए सर्वाइकल के हिस्से में लोगों को परेशानियाँ आती हैं, सर्वाइकल होने की वजह से लोगों के गर्दन में दर्द हो जाता है, चक्कर भी आने लगते हैं, कई बार लोगों को चक्कर भी आता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जब हम हमारे मैट इस बेड पे लेटते हैं, जो हम थर्मल थेरेपी बेड है, जब इस पे कोई व्यक्ति लेटता है तो वो सर्वाइकल के हिस्से पे मशीन रोल करती है, रोलर की तरह चलती है, हल्का मसाज करती है, और मसाज करने से क्या होता है कि यहाँ की जो मसल्स है वो अच्छी हो जाती है, नसों के ऊपर भी थोड़ा सा,
1: सर्वाइकल कहाँ सर?
0: गर्दन,
1: जैसे
0: गर्दन के
1: गर्दन।
0: हिस्से पे,
1: जी
0: गर्दन पे टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पे सर्वाइकल के हिस्से में ही ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम
1: अच्छा,
0: आती है। और उसके अलावा बैक पेन, यानी कमर की दर्द अगर है तो उस बेड पे लेटने से कमर के दर्द में भी वो रोलर अच्छे से मसाज करता है, जिसमें उनको लाभ मिलेगा।
1: तो ये लाभ कितने दिनों में समझ में आता होगा सर, अगर जैसे जिसको प्रॉब्लम है?
0: देखिए, ये लाभ कितने दिन में समझ में आता है, ये पर्सनल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपकी परेशानी ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर नॉर्मल सा दर्द है तो इसमें आपको तुरंत अच्छा महसूस होने लगेगा।
1: मतलब कि आपके कहने का कि इंसान की परेशानी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर ज्यादा लंबे समय की परेशानी है तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, अगर कम समय का है तो रिजल्ट तुरंत मिलता है।
0: जी,
1: जी, अब हम आप दूसरा टॉपिक, जैसे आप बता रहे थे एक बेल्ट होता है, तो उस बेल्ट को जब हम, आप बता रहे हैं, यूज कराते हैं, तो वो बेल्ट कहाँ पे यूज किया जाता है?
0: बेल्ट का इस्तेमाल जो है हम लोग कमर पे कर सकते हैं, जैसे कि कमर में ज़्यादातर लोगों को दर्द होता है, लुम्बर का L1 से लेकर L5 के बीच में, यहाँ पे परेशानी ज़्यादातर क्या होती है कि नसें दब जाती हैं या हड्डी में गैप बढ़ जाता है या इस प्रकार से कोई परेशानी हो जाती है, मसल्स में दर्द होता है, तो कमर में बेल्ट को बांध के रखने से वो भी हीट होता है, टेम्परेचर उसका लगभग 35 से लेके 50-55 तक जाता है सेंटीग्रेड में। तो इसको यूज़ करते समय बस इतना ध्यान रखना होता है कि इसको डायरेक्ट स्किन टच नहीं करते हम, इसको यूज़ करते समय आपको एक बाकायदा एक कॉटन का कपड़ा यूज़ करके, मतलब लगा के उस एरिया पे, फिर आप उस बेल्ट को लगाएंगे कमर पे डायरेक्ट, तो आपको कमर के दर्द में राहत मिलती है। पेट पे भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको वजन वगैरह का कम करना होता है, क्योंकि ये हीट थेरेपी है तो इससे फैट भी आसानी से
1: तो
0: कम
1: क्या
0: होता है।
1: उसमें भी स्टोन लगा रहता है?
0: जी, स्टोन की ही गर्माहट दी जाती है ना।
1: जो ये गर्माहट है वो जिस भी मशीन में है सब में वो स्टोन ही लगा
0: जी,
1: हुआ है।
0: स्टोन की वजह से।
1: ये जैसे पर्टिकुलर कोई एक बीमारी में काम करता है कि सारी बीमारियों में ये काम
0: देखिए,
1: करता है?
0: इसको किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है, नहीं हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसको इस्तेमाल शरीर के ओवरऑल हेल्थ के लिए है, किसी एक बीमारी से जोड़कर हम लोग नहीं देख सकते हैं। एक तरह से अगर आप देखें तो ये प्रिकॉशन की तरह है। इंसान जिस प्रकार से 18-20 साल की उम्र में जिम में जाकर

0: कसरत करता है
1: जी
0: ताकि मसल्स अच्छी
1: मसल्स,
0: बनी
1: हाँ
0: रहे उस उम्र में। तो 50-60 की उम्र में इंसान जिम जाकर कसरत तो ज़्यादा नहीं कर सकता, तो उस उम्र के लोगों के लिए एक तरह की एक्सरसाइज है, ये प्रिकॉशन है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें अगर इंसान करता रहे, थर्मल थेरेपी का सहारा अगर इंसान लेता रहे, तो बुजुर्ग अवस्था में उसको परेशानियां तो आएंगी लेकिन उतनी परेशानी नहीं आएंगी।
1: मतलब कहने का आपका तात्पर्य है कि ये जो 18-20 साल के लोग जो जिम जाते हैं, तो ये वृद्धावस्था का एक प्रकार का जिम है ताकि वो अपने आप
0: हाँ
1: को
0: ये
1: फिट
0: आप
1: रख
0: कह
1: सके
0: सकते
1: हैं।
0: हैं।
1: तो सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे इस थेरेपी को करने के दौरान कुछ खान पीन का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है या किसी चीज की सावधानियां बरतनी पड़ती है कि ये चीज मत खाइए, ऐसा कुछ?
0: नहीं खाने पीने का तो विशेष कोई विशेष ऐसा नहीं है। हाँ जैसे कि गर्म थेरेपी है, हीट थेरेपी है, तो शरीर के अंदर गर्माहट जाती है, तो कोशिश ये

0: गर्म थेरेपी है, हीट थेरेपी है, तो शरीर के अंदर गर्माहट जाती है। तो कोशिश ये रहे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर इस थेरेपी को करें ताकि शरीर डिहाइड्रेट ना हो। जितना पानी पिए रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी खाने वाने की का कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप खाकर थेरेपी। हाँ, खाने के बारे में आप अपने एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो
0: जी
1: आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाने पीने में आप परहेज कर सकते हैं,
0: जी
1: आपके कहने का तात्पर्य ये है। जी बहुत अच्छा। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर कि जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि पानी के लिए आप बोले हैं, तो यहाँ पे जैसे आमतौर पे किसी को कोई दिक्कत होता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, दवा लेता है, लेकिन ये थेरेपी के माध्यम से अगर समस्या हमारी दूर हो रही है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, जैसे गठिया के हो चाहे सर्वाइकल, जो भी आप बता रहे हैं, ये अगर हम कर रहे हैं तो हम रिलीफ मिल रहा है, तो ये कैसे उस थेरेपी के माध्यम से ये रिलीफ मिल रहा है, या उसके लिए कुछ और ऐसी कुछ व्यवस्था भी करनी पड़ी उसके साथ साथ?
0: नहीं, थेरेपी का जो मेन काम है, जैसे मैंने बताया, थर्मल थेरेपी में क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जब ये गर्माहट जाती है तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, मसल्स को अच्छा करता है। तो इससे क्या होता है कि आपको ओवरऑल हेल्थ अच्छा होता है। अब ये आपको अगर कुछ पर्टिकुलर बीमारी के लिए या फिर, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना है।
1: अच्छा सर, ये बताइए, आपका खुद का अपना थेरेपी सेंटर है?
0: जी
1: जी, ये थेरेपी सेंटर में आपके यहाँ किस ढंग के लोग, किस तरह के बीमारी के लोग ज्यादा आते होंगे?
0: देखिए अनु जी, ऐसा है, बीमारी के हिसाब से तो काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो घुटना दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए लोग ही ज़्यादा आते हैं। एक उम्र, जैसे आपने बताया कि 50 साल की उम्र के बाद के लोगों को ये परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो बैक पेन, कमर यानी कि कमर दर्द, घुटना दर्द, सर्वाइकल के से जुड़ी समस्या वाले लोग हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं,
1: अच्छा,
0: और कुछ दिनों में उनको लाभ भी मिल जाता है,
1: कुछ
0: मिल
1: दिनों
0: रहा
1: में सर हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे लगभग मतलब कितने दिनों में, कुछ दिनों में जैसे
0: कुछ
1: इस तरह
0: दिनों
1: के
0: में।
1: पेशेंट आते हैं तो जैसे कुछ एक समय होता होगा ना
0: देखिए
1: हफ्ता?
0: फर्क तो, उनको पहले दूसरे दिन करने से ही समझ में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ होती है तो पहले दूसरे दिन से ही उनको फर्क समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति की तकलीफ अलग अलग है, तो उसके अनुसार, उसके शरीर के ऊपर, उसे खान पान का कैसा है, क्या सिस्टम है, रहन सहन कैसा है, खान पान क्या है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है थेरेपी के बारे थेरेपी का असर दिखता है।
1: लेकिन दिखता सबको है,
0: हाँ
1: दिखता सबको है।
0: देखिए,
1: और ये
0: मैंने क्या बताया कि ये एक तरह का प्रिकॉशन है ना। अगर अगर आपको कमर में दर्द नहीं है फिर भी अगर आप इसको कर रही हैं तो आपको जल्दी, मतलब कभी ये दर्द तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप पर तकलीफ है तो आजकल लोग सजेस्ट भी करते हैं, डॉक्टर्स भी फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट
1: बिल्कुल
0: करते हैं, ये
1: बिल्कुल,
0: सारी चीज़ों के
1: हाँ
0: लिए सजेस्ट
1: हाँ
0: करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस थेरेपी से ही सही होती हैं। तो अभी
1: अच्छा,
0: ये थर्मल थेरेपी थोड़ा सा एडवांस है।
1: एडवांस मतलब थेरेपी तो है लेकिन ये एडवांस थेरेपी है।
0: जी,
1: जी, और जैसा कि आप बोल रहे
0: थर्मल
1: हैं,
0: थेरेपी का देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें तो हीट थेरेपी का इस शुरुआत जो है ना बहुत पहले से है, पर हम उसके बारे में अवेयर उतने नहीं थे। क्योंकि पहले के समय में जब युद्ध वगैरह होते थे, राजा महाराजा लोग लड़ाई करते थे, तो उस समय जो बड़ी बड़ी चोट लगती थी लोगों को, तो उसको ठीक करने के लिए वो क्या करते थे, अपने खंजर को गर्म करके
1: जी,
0: और फिर वहाँ पे उसको
1: हाँ,
0: सेकते हैं,
1: सेकते थे
0: तो
1: गर्म
0: जिसकी
1: कर।
0: वजह से वो जख्म का निशान तो रहता था उनके शरीर पे, लेकिन पॉइजन उनके शरीर में नहीं फैलता था,
1: नहीं
0: इंसान
1: फैलता
0: जिंदा
1: था।
0: रहता था।
1: जी,
0: और हीट थेरेपी जो होती है, थर्मल थेरेपी में हीट थेरेपी जो होती है, ये तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है कि स्टीम बाथ लेते हैं वजन कम करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए स्टीम बाथ वगैरह का भी चलन है।
1: बहुत सारी चीजें, हाँ,
0: जी, तो वो एक अलग तरीका है, ये थोड़ा सा तरीका अलग है। थर्मल थेरेपी में जैसे कि हम लोग स्टोन का इस्तेमाल करके बॉडी को हीट गर्माहट दे रहे हैं, वहाँ पे जो दूसरे चीज़ें हैं उसमें भाप का इस्तेमाल करते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी को ठीक करने के लिए भी हीट थेरेपी का बड़ा ही अच्छा योगदान है।
1: अच्छा, तो मतलब जैसे कैंसर जैसी बीमारी में भी ये
0: ये, हाँ बिल्कुल
1: थेरेपी लिया
0: बिल्कुल,
1: जा सकता है?
0: कैंसर जैसी बीमारी में ये अच्छे से आपको लाभ दे सकता है। यानी कि जो आप थेरेपी, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, देखिए उसका जो ट्रीटमेंट के साथ साथ में अगर आप इस थेरेपी को कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। मैट क्या है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है।
1: अच्छा
0: कैंसर
1: अच्छा
0: के जो सेल्स होते हैं वो, जब शरीर का तापमान कम होता है, जैसे जिसको कैंसर हो जाता है उसकी बॉडी का तापमान कम हो जाता है।
1: अच्छा जी, ऑटोमेटिक कम होने
0: हाँ, तो
1: लगता
0: इस
1: है।

0: शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो ये हीट थेरेपी क्या करेगी, अगर इसका इस्तेमाल कैंसर के पेशेंट्स भी अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभ देगा, सपोर्ट करेगा उनको ठीक होने में।
1: मतलब आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा,
0: जी,
1: टेम्परेचर को कम नहीं होने देगा। तो इसके लिए आप थर्मल थेरेपी के लिए सर और क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा चीज है, लोगों को करना चाहिए या नहीं?
0: देखिए थर्मल थेरेपी की जो जब से मैं जान रहा हूँ, मुझे 15 साल हो गए हैं इस चीज़ को करते हुए, और 1992 से इसकी शुरुआत लगभग हमारे यहाँ पे इंडिया में हुई है,
1: अच्छा, उन्नीस सौ
0: और
1: बानवे
0: कई जगह पे धीरे धीरे, पहले तो कुछ बड़े शहरों में ही हो रहा था थर्मल थेरेपी, लेकिन आजकल हर एक शहर में काफ़ी जगह पे अलग अलग नाम से इसको स्टार्ट किया गया है, अलग अलग जगह पे इसको लोग करते हैं, लाभ भी ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूरे हर जगह पे ये सेंटर है, वहाँ जाकर लोग इसका लाभ ले रहे हैं।
1: बिल्कुल सर। जैसे कि अभी आप एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि कमर और घुटने के पेशेंट आपके यहाँ ज्यादा आते हैं, तो सर क्या घुटने के लिए कुछ स्पेशल कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप लोग थेरेपी कराते हैं या मैट के माध्यम से ही कराते हैं सिर्फ?
0: नहीं, घुटने के लिए जो हमारे पास थेरेपी है उसमें हम लोग टेंस थेरेपी, वाइब्रेशन थेरेपी का भी इस्तेमाल कराते हैं। वो टेंस थेरेपी यानी कि एक उसी उपकरण एक ऐसा होता है जिससे उनकी घुटने में लगाकर वाइब्रेशन और टेंस थेरेपी भी कराई जाती है, उससे भी
1: अच्छा
0: लोगों को लाभ मिलता है।
1: अच्छा मतलब उसको घुटने पे लगा के टेंस थेरेपी होता है, तो क्या वो कैसा होता है, पैच टाइप में कैसा क्या होता है वो?
0: पैच की तरह ही होता है, मतलब एक छोटे छोटे पैच होते हैं वो चिपकाते हैं, या फिजियोथेरेपी वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: फिजियोथेरेपी भी
1: उसको
0: इसका।
1: लगा के, उस टेंस थेरेपी उसको बोलते हैं, उससे लगा के किया जाता है जिससे आपके घुटने की समस्या धीरे धीरे दूर होती है।
0: जी
1: अच्छा, जैसा कि अभी आप बता रहे थे सर बेल्ट के बारे में कि इतने स्टोन लगे होते हैं, तो आपके यहाँ बेल्ट है और अभी आप बताए हैं कि घुटने के लिए पैच लगा के टेंस थेरेपी, तो आपके यहाँ और भी क्या क्या सुविधाएं हैं और कौन कौन किस तरह की मशीनें हैं, चाहे
0: देखिए
1: थर्मल थेरेपी में किस प्रकार की ये सारी मशीनें आती हैं?
0: जी थर्मल, देखिए हमारे पास जो थर्मल थेरेपी के अंदर हम लोग तमाम प्रकार के उपकरण रखे हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसमें अभी हमने एक ऐसी मशीन है जो नर्व स्टिमुलेटर की काम करती है, NSM हम लोग बोलते हैं, नर्व स्टिमुलेटर मशीन। तो ये नसों के ऊपर वाइब्रेशन का काम करती है, इस पे खड़े होकर जब हम थेरेपी करते हैं या बैठ कर थेरेपी करते हैं तो ये शरीर के अंदर कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन से क्या होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी अच्छा सुधार होता है, मांसपेशियाँ भी अच्छी होती हैं, और तमाम प्रकार के उससे लाभ मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मसाज चेयर भी हम लोग रखते हैं, मसाज चेयर, ये भी बहुत आजकल चलन में है,
1: ये
0: मसाज
1: मसाज
0: चेयर।
1: चेयर क्या होता है?
0: मसाज चेयर से शरीर का मसाज होता है और मालिश होता है एक तरह से, और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं,
1: अच्छा,
0: जैसे कि रक्त के संचार में सुधार, मालिश करने से, आप सभी को, हम सभी को पता है कि मालिश जो है हमारी बचपन से होती आ रही है। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का होता है, जब से हम लोग, 1 दिन का, 2 दिन का होता है, तब से हम लोग उसकी मालिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पहले लोग कहावत भी कहते थे कि बचपन की गई भी मालिश बुढ़ापे तक काम आती है। तो मालिश करने से क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत हो जाती हैं, रक्त संचार अच्छा हो जाता है, जोड़ों का जो जकड़न होता है वो कम हो जाता है, शरीर में लचीलापन बढ़ जाता है, जैसे दर्द में राहत मिलता है, जैसे आपको, हम सभी को
1: मतलब
0: पता है कि
1: कहने का एक तरह से देखा जाए तो ये फुल बॉडी मसाजर
0: हाँ,
1: है।
0: तो ये चेयर एक इस तरह से बनी होती है कि इसके अंदर आप जब बैठ जाते हैं तो आपके पैर से लेके कंधे को, हाथ, रीढ़ की हड्डी, सब चीज़ों पे अच्छे से मसाज करती है, और मसाज करने की वजह से शरीर पूरी तरह से रिलैक्स में आ जाता है।
1: अच्छा,
0: जैसे आप कहीं लंबे सफ़र पे ट्रेवलिंग करके आ रहे हैं, या फिर आप बहुत देर से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और बहुत बैठकर काम कर रहे हैं, और आपकी बैक में दर्द हो रहा
1: बैक
0: है या
1: साइड,
0: शरीर में बहुत
1: जी
0: ज़्यादा
1: जी
0: थकावट सा महसूस हो रहा है, तो एक बार आप उस मसाज चेयर पे बैठ जाएंगे तो मात्र 20 मिनट के अंदर आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर वापस आ जाएंगे।
1: मतलब एक बार अगर उस पे हम थेरेपी लेते हैं तो 20 मिनट में पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। तो
0: जी
1: इस तरह की सारी मशीनें आपके पास हैं,
0: जी
1: तो जैसे कि आप क्या क्या बताए हैं कि मसाज चेयर बता रहे हैं,
0: कई सारे
1: मॉम
0: उपकरण, देखिए थर्मल थेरेपी को में कई सारी चीज़ें भी शामिल की जाती है, जैसे थर्मल
1: जैसे
0: थेरेपी के अंतर्गत मसाज थेरेपी भी शामिल हो जाती है, जो उपकरण है उसके अंदर मसाज भी होता है, एक्यूप्रेशर, कायरोप्रैक्टिक, FIR रेस की गर्माहट, वाइब्रेशन, टेंस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो ये सारे उपकरण जो हमारे पास है उसमें मुख्य रूप से मैट, जो काफ़ी फायदेमंद होती है, मैट के अलावा बेड होते हैं, मसाज चेयर होते हैं, NSM है, बेल्ट है, कुछ पैच है, और जो इस मैट के अंदर लगाया हुआ स्टोन है, तो इस स्टोन का हम लोग अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को

0: कहीं तकलीफ है तो उस स्टोन को वहाँ पे रखने से उसमें लाभ मिल जाता है, क्योंकि उस कुछ स्टोन जो है मैग्नेटिक चीज़ों का भी इस्तेमाल करके भी किया जाता है। मैग्नेटिक थेरेपी भी हम
1: जी
0: लोग
1: जी
0: कराते हैं, जिसको जिसको न्यूडेनियम मैग्नेट जो है कि उसका इस्तेमाल करके कुछ स्टोन बनाए गए हैं
1: जी
0: जो कि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं।
1: अच्छा, मतलब ये सारी चीजों की थेरेपी कराई जाती है, थर्मल थेरेपी के अंदर ये सारा चीज आता
0: जी जी
1: है।
0: जी
1: और जैसा कि है सर कि आपके यहाँ जैसे ये कराया जाता होगा तो एक समय सीमा मतलब सीमित होता होगा ना कि मुझे इतना जो लोग आ रहे हैं उनको कितने देर तक आप लोग देते हैं थेरेपी?
0: जैसे देखिए, हम अपने थेरेपी सेंटर पे तो हम लोगों को करीबन 40 से 50 मिनट की थेरेपी कराते हैं एक सेटिंग में। तो थर्मल थेरेपी मतलब 40-50 मिनट करने के बाद, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं।
1: नहीं, जैसे कि 40-50 मिनट आप बता रहे हैं और आप मशीनें इतनी ढेर सारी बताए हैं, तो क्या पर्टिकुलर किसी जिसे किसी को घुटने की दिक्कत हो तो घुटने के लिए अलग देते हैं उसके लिए, ऐसे कि पूरी थेरेपी आप बराबर में करवाते हैं?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, जो जिसको जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशानी है उस चीज़ को अच्छे से करने के लिए वो वही पर्टिकुलर करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली जैसे मैंने बताया कि हम लोग प्रिकॉशन के लिए यूज़ करा रहे हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक चीज़ नहीं कराते हैं, हम सारी थेरेपी कराते हैं ताकि ओवरऑल हेल्थ उनका अच्छा रहे।
1: तो ये थेरेपी आप जो सारी करा रही हैं वो कितने देर की कराते हैं, कितने कितने देर की सारी थेरेपी आप कराते होंगे?
0: टोटल हमने बताया आपको कि एक व्यक्ति को सारी थेरेपी कंप्लीट करने में लगभग 40 मिनट लगता है, कि कोई थेरेपी 20 मिनट, फिर 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, इस तरह से अलग अलग मशीनों के ऊपर अलग अलग टाइमिंग से हम लोग थेरेपी कराते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: जैसे कि आप बताएं बेल्ट है, मैट है, नेशम है और चेयर है, मतलब इस तरह से सारा चीज ले देके मतलब
0: चालीस
1: कुल
0: मिनट
1: चालीस
0: चालीस
1: पचास
0: मिनट तक
1: मिनट आपका
0: जाता
1: लग
0: है।
1: जाता
0: जी जी
1: है। अच्छा, तो जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे लगातार आ रहा है 40-50 मिनट कर रहा है थेरेपी और आराम मिले, तो वो कब तक आ पाता है, कितने दिनों तक?
0: देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ पेशेंट जैसे हम कुछ लोग जो आते हैं वो कुछ दिन करते हैं, कोई 1 महीना करता है, कोई 2 महीना करता है, जब उनको राहत मिल जाती है तो फिर वो नहीं करते हैं। लेकिन जनरली अगर आप चाहें तो इसको हमेशा कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए कैसे क्या किया जाता है सर? जैसे कोई अगर सोचे कि नहीं अब हम नहीं आना चाहते हैं, तो उस क्या किया जाता
0: हाँ,
1: है?
0: ऐसा होता है कि जब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनको रोज़ रोज़ आकर थेरेपी करना परेशानी होती है, दूर हो जाता है, जैसे कहीं आने जाने की सब परेशानी है, धूप है, बरसात है, ठंडी ज़्यादा है, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हम रोज़ रोज़ जाना संभव नहीं है। तो इस थर्मल थेरेपी जो हम लोग जिस पे हम थेरेपी कराते हैं, ये होम यूज़ की तरह उपकरण बनाए गए हैं, अगर व्यक्ति चाहे तो इसको खरीद के और अपने घर पे रख कर भी इसका लाभ ले सकता है। काफ़ी लोग ऐसा किए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाते वो लोग घर पे ले जाकर करते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, और हम सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अनु जी।
2: अभी आप वट वृक्ष कार्यक्रम में वृद्धावस्था में थर्मल थेरेपी विषय पर मनीष यादव से अनु जायसवाल की बातचीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 बजे और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:23 पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग, कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो श्रोताओं, हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
4: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM न्यूज़।

0: अनियायर ऐप और वेबसोटीटी पर कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां हैं आप वहीं हमारा साथ।
1: सुन जा ठंडी हवा।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10:30 और 11 सेकंड स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित वीजी जोग का वायलिन पर बजाया राग जय जयवंती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं कनल दत्ता।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित विधि जोग का वायलिन पर बजाया राग जय जयवंती सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत किए थे कनाल दत्ता। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:59 और 30 सेकंड हो रहे हैं।

0: यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, वेब्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती हमारी ये सभा कल प्रातः 5:53 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के संग हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।